जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 और 42 सेकंड हो रहे हैं। श्रोताओं, आपके अभिवादन के साथ अब आरंभ हो रही आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

मीडियम में 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्स के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:04 हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी

0: संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the importance.
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
4: जिंदगी बहुत कीमती है,
5: उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर

0: तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
1: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
1: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक,
7: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
6: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
7: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
6: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
7: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ, लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
8: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
9: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
8: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
9: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
8: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
9: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
8: For details, log on to www.ddindia.com।
10: भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना में आपका स्वागत है। चेतना ही प्रेम है, चेतना ही भगवान है, चेतना का क्या लक्षण है, अस्ति भांति प्रीति, जो होता है, जो प्रकाशमान है और जो प्रीति है, वही ईश्वर है।

आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार हमारी आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है और मोक्ष की अवस्था में आत्मा का परमात्मा में मिलन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है।

समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसलिए अपने कार्यों का स्वयं मूल्यांकन करें। जो सिर्फ अवसरों को देखना चाहता है, वह बाधाओं में भी संभावनाएं देखता है।

सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो वो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में ही होती है। आप जैसा व्यवहार करते हैं वही आपकी पूजा है। धर्म शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में होता है।

0: ये थी आज की वंदना। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: किसी कार्य के प्रति भाव की अगर शुद्धि नहीं है तो वह कार्य पूर्ण रूप से आपको आत्मसंतुष्ट नहीं कर सकता। तो सर्वप्रथम तो भाव की शुद्धि हो कैसे, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से जो भी भजे तो समझे भव से पार है। भगवान ये भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, कि कोई पत्ता कोई पुष्प कोई फूल अर्पण करे, या अर्पण करने की सारी विधियाँ अगर भाव परक नहीं है। तो आपने कथा सुनी है कि जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए, उनने विचार किया कि चलो एक बार हम भी समझाते हैं, और समझाने के लिए जब आए तो दुर्योधन ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी कि उस व्यवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण रीझ गए।

0: अपने सिंहासन पर बिठाया, पादप प्रक्षालन किया। प्रक्षालन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम इतने अच्छे हो और इतने स्नेह से तुमने मेरा स्वागत सत्कार किया, मेरा एक कहा मान लो। देखिए, बनावटीपन से संसार रह सकता है, मैं प्रायः निवेदन करता हूँ कि जीवन में भगवत परक कर भाव है तो उसमें बनावटीपन बिल्कुल ना हो। दुर्योधन ने भगवान के लिए व्यवस्थाएं तो खूब करी, परंतु जैसे ही भगवान ने कहा कि तुम नहीं देना चाहते हो साम्राज्य, कोई बात नहीं, तुम 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन कहता है कि 5 गांव क्या मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। इतना सुनते ही भगवान को लगा ये जैसे सारी इसकी व्यवस्थाएं थी वो बाह्य थी, आंतरिक नहीं थी। आंतरिक पवित्रता के बिना पवित्र भाव का उदय हो जाना यह संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है तब मैं चलता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा हमने इतने भोज्य पदार्थ बनवाए हैं 56 प्रकार के, आप इसे पा कर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा निमंत्रण विदुर के वहाँ है। उसी सभा में विदुर जी बैठे हैं, छोटे से नीचे सिंहासन पर विराजमान। विदुर जी ने भगवान को देखा, कांपने लगे, दुर्योधन को देख रहे हैं कि प्रभु ये क्या कह रहे हो, लेकिन कोई मेरे घर प्रसाद पाने आए तो सौभाग्य है, तो विदुर जी नहीं कर पा रहे। विदुर जी को रोका दुर्योधन ने और भगवान सीधे विदुर जी के घर पहुंच गए। बाहर दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? भगवान कहते मैं कृष्ण, द्वारिका से आया हूँ। इतना सुनकर के विदुरानी की पत्नी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि मेरे घर कृष्ण आ सकते हैं। दरवाज़ा खोला, सामने प्रभु को पाया तो प्रभु के हाथ को स्पर्श करती, प्रभु सच में मेरे घर आए हो आप? भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अगर भाव है ना तो भगवान भोजन मांग के पालेंगे, और भाव नहीं है तो कितना भी कुछ अर्पण करते रहो। और भाव है कि नहीं यह कोई बता भी नहीं सकता, यह एक ऐसा आंतरिक विषय है जिससे आप ही विज्ञ और अभिज्ञ दोनों स्थितियां आपकी ही हैं। भगवान अंदर पहुंचे और उन्होंने जल्दी से शीघ्रता से एक शिला पर बिठाया और केले का फल लेके आए। और संयोग देखिए, चाहे प्रेम में चाहे भाव में, अक्सर भाव में व्यक्ति होता है तो उसकी क्रियाएं थोड़ा ऐसी इधर उधर हो जाती हैं। तो विदुरानी केले का छिलका प्रभु को पवाने लगी और केला स्वयं पाने लगे। भगवान के नेत्र से भी अश्रु गिर रहे हैं और विदुरानी के भी नेत्र से अश्रु गिर रहे हैं। अचानक विदुर जी महाराज दौड़ते हाँपते भागते हुए आए और जब उन्होंने दशा देखी कि विदुरानी भगवान को केले का छिलका दे रही हैं और बड़ी प्रेम से बड़े चाव से पा रहे हैं, प्रभु ऐसा लग रहा है कि उस केले के छिलके में उस केले से भी अधिक स्वाद हो। अचानक हाथ पकड़ा विदुर ने विदुरानी का, क्या कर रही हो? जिस प्रभु ने 56 प्रकार के भोग का त्याग कर दिया हो कि मैं विदुर के वहाँ प्रसाद पाऊंगा, उस भगवान को तुम केले का छिलका खिला रही हो। विदुरानी सहम गई, उन्होंने भगवान से क्षमा याचना किया कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई। भगवान ने विदुर जी से कहा कि विदुर, जो स्नेह, जो प्रेम, जो भाव था, वह प्रेम तुमने छीन लिया। जो आनंद उस केले के छिलके में आ रहा था, वह आनंद इस फल में नहीं आ रहा। इस कथा का आशय मात्र इतना है कि अगर भाव प्रधान है, भाव अगर आपका दिव्य है, तो निश्चित है आप कुछ भी अर्पण करो उस परमात्मा तक पहुंच ही जाता है।
1: ये था आज का चिंतन बिंदु। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज की हमारी विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

समाचार दर्शन का कार्यक्रम होगा प्रातः 9:50 पे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप इस सभा में सुन सकेंगे प्रातः 7:31 पर, 8:45 पर और 10:05 पे।

लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग में आज दिन में 11:05 पर सुनेंगे ललन मिश्रा और उनके साथियों के गाए कुछ लोकगीत।

एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप उमंग सुन सकेंगे दिन में 12 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा गीतांजलि दैनिक 11:30 पर और गाने सुहाने 12:30 पर।

दिन 12:55 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर के गाए कुछ गीत और गजल। महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा दिन 1:15 में। खेती किसानी में कार्यक्रम में दिन 1:50 पर आप सुन सकेंगे बातचीत, विषय है खरीफ सब्जियों की प्रजातियां। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव और विनय कुमार।

हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे आप सुनेंगे एक वार्ता। विषय है हिंदी रंगमंच। वार्ताकार होंगे गीता शर्मा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद अल्लाह रक्का खां और उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 7:31 पे। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे आज के विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठ पूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

0: ये था आज का मानस प्रसंग। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:54 और 38 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार सुनेंगे। कृपया

0: विधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपति भवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्ना अस्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्ण रूपेण लाभो भविष्यति।
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः, कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः, प्रवक्ता च डॉक्टर संवित पात्रावर्यः नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
0: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और

0: गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुच्चेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management and culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, the Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
4: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit.

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा अपनी बनाओ पहचान केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 900 किलो हर्ट्स के साथ FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:17 और 32 सेकंड हो रहे हैं। कुछ पलों में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति, 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को कल सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
3: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: मुख्यमंत्री ने कल बिजनौर जिले में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीजधारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
3: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा, आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास यही परिवर्तन लाएगा, हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
2: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। गोरखपुर और कुशीनगर में लोकार्पण तथा शिलान्यास के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे। वह आज कुशीनगर जिले के तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर में आयोजित समारोह में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर श्री योगी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम गोरखपुर में चिलुआ ताल घाट पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए गए चिलुआ ताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफ़ी कमी आई है। स्थायी पुलिस महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। करीब 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी की ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को आधिकारिक रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में मुख्य रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्रस्तुत है किसान कल्याण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट।
5: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में प्रदेश के पूर्वी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग द्वारा आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे क्रमिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति। 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सोहनी आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: संगी हर पल चंदन का एहसास।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details, log on to www.ddindia.com।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
9: फिल्म संगीत के कार्यक्रम पूर्वासवानी में रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म यादों की बारात में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। और आइए अब यशुदास और हेमलता को सुनते हैं फिल्म चिचोर में। गीत व संगीत रविंद्र जैन का है।

और आइए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनते हैं फिल्म आंधी में। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत आर डी बर्मन का है।

और आइए लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में सुनते हैं ये नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म सिलसिला से। जावेद अख्तर के लिखे बोल को संगीत दिया है शिव हरी ने।

0: लता मंगेशकर किशोर कुमार और उनके साथियों के गाए फिल्म सिलसिला के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम पूर्वा सुहानी अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:59:47 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा बारी बारी से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच

0: कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: Both sides underscored the importance.
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
4: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
5: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
3: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
6: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
3: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
7: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान

0: में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President Ou Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Mistry said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the president has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth, and prosperity in the region.
2: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement, and negotiations are now focused on a few minor issues, commerce and full stops. We have a report.
4: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement, BTA. The talks will take place in New Delhi from today and it will last till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator, Brendan Lynch. On 3rd of February, both sides announced the framework for the first phase of the BTA. The two sides have proposed to finalize the details of the interim agreement and take forward the negotiations under the broader BTA on multiple areas such as market access, non-tariff measures, customs and trade facilitation, and investment promotion. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on the Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion, and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office, and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, "Today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of poor, farmers, women and youth." Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards the empowerment of women.
5: Over the past 12 years, women empowerment in India has witnessed a transformative shift driven by sustained government efforts to enhance access to healthcare, education, livelihood opportunities, financial inclusion and leadership roles. The Pradhan Mantri Mudra Yojana, launched in 2015, has enabled millions of women to access collateral-free loans to start and expand their businesses. Under the scheme, loans worth more than 40 lakh crore rupees had been disbursed to beneficiaries by March this year. Of them, around 17 lakh crore rupees were given to women. Talking to Akashwani News, Vanisri from Tirupur, Tamil Nadu, said that the scheme had motivated her to become entrepreneurs.
6: With the help of this scheme, I started my dream career and opened my new business as a small boutique shop. And I'm really proud to say it's running successfully. Now I'm capable to start 2 to 3 branches also, and also give more franchises also. Only with the help of this PM Mudra scheme, it motivates me to become an entrepreneur in a larger level.
5: The flagship schemes such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Sukanya Samridhi Yojana and Womenia Initiative have collectively strengthened women's access to banking, savings and entrepreneurial platforms. Under the Jan Dhan Yojana, a total of over 58 crore accounts have been opened till date, and out of these, around 33 crore Jan Dhan accounts belong to women. Talking to Akashvani News, a resident of Shimla in Himachal Pradesh, Saroj Bala said that after opening the Jan Dhan account, the full benefits of government schemes are now directly credited to her bank account.
7: मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है. उन्होंने आम

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए वसीतर मौजूआत पर बातचीत की। म्यांमा के सदर भारत के 5 के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामानिकारों को जानकारी देते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने म्यांमा के इकतदार आला और इलाकाई सालिमियत के तई भारत की हिमायत का इरादा किया और तरफेन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेचा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की।
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: खारिजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खास तौर पर तजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मस्नूई जहानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमा के सदर आला सतह के वफद के हमराह आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है और अब मुजाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टीम दो तरफा तजारती मुआहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कॉमर्स के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरातकार हैं, जबकि अमरीकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरातकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के आला अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल तंजीमी तौसी और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने से मुतालिक बातचीत के कलीदी निकात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मल कर रही है और हर किसी ने यह महसूस किया है कि कैसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़्यादत में भारत में हर शोबे में तरक्की रूनुमा हुई है। जनाब पात्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और एनडीए को मुल्क की 22 रियासतों में खिदमात अंजाम देने का मौका हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मिसाली क़्यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज़ और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को बा इख्तियार बनाने से मुतालिक किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: گزشتہ 12 سال میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق اقدامات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ حکومت کی جانب سے حفظان صحت، تعلیم، روزگار کے مواقع اور معاشی شمولیت کے لیے کیے گئے اقدامات اس تبدیلی کے محرک ہیں۔ پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت، جس کا آغاز 2015 میں کیا گیا تھا، کروڑوں خواتین اپنے کاروبار کو شروع کرنے اور وسعت دینے کے لیے ضمانت سے مبرہ قرض حاصل کر پائی ہیں۔ مذکورہ اسکیم کے تحت اس سال مارچ کے آخر تک 40 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا قرض دیا جا چکا ہے، جس میں سے 17 لاکھ کروڑ روپے خواتین کو دیے گئے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تروپور تمل ناڈو کی رہائشی ونشیری نے بتایا،
3: اس یوجنا کی سہایتا سے میں نے اپنی نئی بوٹک شاپ کھولی ہے اور میں یہ گرو کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ شاپ بہت اچھی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اب اپنے پرتشٹھان کی 3 سے 4 اور شاخاؤں کا سفل سنچالن کرنے میں سکشم ہو گئی ہوں۔
4: 2-3 برانچز آلسو۔
2: پردھان منتری جن دھن یوجنا، سکنیا سمردھی یوجنا اور امانیا جیسی کلیدی اسکیموں کی بدولت بینکاری، بچت اور کاروباری پلیٹ فارموں تک خواتین کی پہنچ بڑھی ہے۔ جن دھن یوجنا کے تحت خواتین کے 33 کروڑ جن دھن کھاتے کھولے جا چکے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہماچل پردیش میں شملہ کی رہائشی سروج بالا نے کہا کہ حکومت کی اسکیموں سے متعلق رقم اب سیدھے ان کے بینک کھاتے میں منتقل کی جاتی ہے۔
5: یہ زیرو بیلنس سے کھاتا آرام سے کھل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی راشی جمع نہیں کروانی پڑتی۔ جب کرونا تھا، جب کسی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس سمے لوگوں کو 1500 روپیہ مودی سرکار نے دیا۔ مودی جی کے 12 ورش کا کاریہ کال بہت اچھا ہے۔

0: उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: इख्तराई प्रोग्रामों और मौजों पॉलिसियों के साथ ख्वातीन एक खुद कफील और सबकी शमूलियत वाली मईशत को तश्कील देने में अहम रोल अदा कर रही हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
2: सुप्रीम कोर्ट में 9 तकर्रर शुदा 5 जज आज हलफ लेंगे। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकर्री की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने तलबा के लिए नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने ये जानकारी दी है। CBSE ने तलबा को ये सलाह दी है कि वो नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए दरख्वास्त देने के तरीके के बारे में हिदायत के ताल्लुक से वीडियो को ध्यान से देखें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूनेस्को आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। मजकूरा मकाम रियासत के चमोली ज़िले में है। जंगलात के महकमे ने सैयाहों से अपील की है कि वो वैली के मालामाल हयातियाती तनव्वो और पौधों की कमयाब अकसाम के तहफ्फुज़ में तआवुन करें। महकमे के मुताबिक वैली ऑफ फ्लावर्स में सरदस्त फूलों की 300 अकसाम और पौधों की मुतअद्दिद कमयाब अकसाम हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चेतना खंडपाल ने बताया कि वैली 31 अक्टूबर तक सैयाहों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 ऑफ अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: काबिले जिक्र है कि वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसे खित्ते में वाक़े है जहाँ मुश्किल जुग्राफियाई हालात हैं। मौसमी हालात और सलामती के मेयारात को मद्देनजर रखते हुए सैयाहों को ज़रूरी रहनुमा खतूत जारी किए जा रहे हैं ताकि उनके सफ़र को महफूज और लुत्फानंदोज बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर ज़िले में बेतवा दरिया पर ज़ेर तामीर पुल का कुछ हिस्सा गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की 2 इंक्वायरी कमेटियां तशकील दी हैं। इस सानहे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। हमीरपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तशकील दी गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी इस वाक़े से वाबस्ता सभी इंतज़ामी, तकनीकी और तरीक़ाकार से मुतालिक पहलुओं की तफसीली जाँच कर रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस हादसे के सिलसिले में कुरारा थाने में केस दर्ज किया गया है। साल 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी अब कश्तीरानी के मुकाबले वाले बड़े बैन अल-अक़वामी खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करेंगे, जिसमें एशियाई खेल और वर्ल्ड कप सर्किट शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: खेलों के महकमे की वजारत ने कहा है कि इन कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया जाना तमकों के इनफरादी इम्कानात पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय कश्ती के कई खेल मुकाबलों में पायदार इस्तेहकाम कायम करने की एक और कोशिश है। जिन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है उनमें 2024 के पेरिस ओलंपिक में खेलने वाले बलराज पंवर, एशियाई गेम्स 2022 में चांदी का तमगा हासिल करने वाले अरविंद सिंह और 2022 के ही एशियाई गेम्स में 2 तमगे जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। शामिल किए गए बेशतर खिलाड़ियों को खासतौर पर 2026 के एशियाई खेलों को जहन में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
2: हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के तीसरे और 36वें मिनट में 2 गोल किए। वरिंद्र सिंह ने 5वें मिनट में 1 गोल किया, जबकि शाहरुख अली ने खेल के 54वें मिनट में जोरदार तरीके से गोल किया। इस कामयाबी के साथ ही पूले में कोरिया और जापान के साथ साथ भारत के भी 6 पॉइंट हो गए हैं। भारत कल अपना आखिरी पूल मैच चीनी ताइपे के खिलाफ खेलेगा। केरलम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर 14 जिलों में से 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन में बारिश में शिद्दत आने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और सालिसों के तवस्सुत से लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप को इससे मुत्तला किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर गुफ्तगू के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। अमरीकी सदर ने कहा कि अब कोई भी फौजी बेरूत नहीं जाएगा और जो फौजी वहां रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। सदर ट्रंप ने बताया कि हिजबुल्ला ग्रुप ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि सभी तरह की गोलीबारी बंद हो जाएगी, इसराइल उस पर हमला नहीं करेगा और वो भी इसराइल पर कोई वार नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 MLA संदीपन साहा और ऋतब्रता बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया है। ये कार्रवाई दोनों रहनुमाओं की जानिब से पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों, कलीदी मीटिंगों में अदम मौजूदगी और पार्टी क़यादत मुखालिफ बयानात की वजह से की गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमा के सदर के दरमियान हुई बातचीत को नुमाया किया है। वजीर आजम ने म्यांमा के तई हिमायत का इरादा किया, जबकि सदर ओमिन आउलाइन ने कहा कि म्यांमा में भारत मुखालिफ अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की कुल तादाद 37 हो गई। रोजनामा इनकलाब की नीट इम्तिहान से मुतालिक सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का नीट इम्तिहान कंप्यूटर से कराने से इनकार, पेपर लीक की वजह से दोबारा इम्तिहान के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर की गई है।
2: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। म्यांमा के सदर ओमिन आउलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 चार गोल से हरा दिया। 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
5: मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट सुपर हिट।

आप सुन रहे थे आदेश श्रीवास्तव को फिल्म राजनीति में। शब्द रचना समीर की थी और संगीत आदेश श्रीवास्तव का था। और आइए अब के को सुनते हैं फिल्म ओम शांति ओम में। विशाल दादानी के बोल को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सांवरिया का ये गीत। और आइए अब शान और कैलाश खेर की आवाज में सुनते हैं फिल्म फना का ये गीत। शब्द रचना प्रसून जोशी की है और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: संगीत कैलाश खेर का।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये नगमा। गीत लिखा है अनिल पांडे ने और संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने और आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की।

सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए गए फिल्म कभी खुशी कभी गम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट सुपर हिट अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप कुछ ही पलों में हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बाह्य सेवा प्रभाग जो है इसका, वो 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज को पहुंचाता है और प्रवासी भारतीयों से जुड़ता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए AIR का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस विशाल देश के प्रत्येक निवासी को विभिन्न भूभागों में 24 घंटे सातों दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार और विचार उपलब्ध कराने
1: हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
3: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कानपुर झांसी चित्रकूट धाम मंडलों की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाही ने स्टालों पर जाकर विभिन्न उत्पादों के विषय में जानकारी लिया। गोष्ठी के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि सहित कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक गण कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने के साथ ही खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने के लिए सरकार द्वारा KCC योजना को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन की बचत, उन्होंने प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक संसाधनों पर जोर देते हुए संस्थान में किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के साथ ही कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश, युवाओं को रोजगार पूरक प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के तथा विद्यार्थियों को साइकिलों के माध्यम से चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अनुदेशक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय में लगभग दोगुनी वृद्धि करते हुए प्रदेश सरकार ने इसे 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। श्री राकेश सचान ने बताया कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा तथा अनुदेशकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक खेलकूद, योग, संगीत, कला एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मकता विकसित कर रहे हैं। यह निर्णय बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अनुदेशकों के योगदान का सम्मान है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडुनगर कानपुर नगर का औचित्य निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संवाद कर उनके कौशल विकास, प्रशिक्षण अनुभव एवं भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक संसाधनों पर जोर देते हुए संस्थान में किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के साथ ही कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश, युवाओं को रोजगार पूरक प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के निर्देश दिया। मंत्री कपिल अग्रवाल ने बताया,
4: कानपुर जो एक बड़ा हब है, इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है, तो यहाँ के उद्यमियों से भी, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि ITI में कभी विजिट करें, बच्चों की आवश्यकता को समझें कि बच्चे ITI करते करते ड्यूअल सिस्टम के अंदर बच्चे ITI में भी काम करें और इंडस्ट्री के अंदर भी प्रशिक्षण लें, तो इन बच्चों को भी इंडस्ट्री में घुमाएं, देखें ताकि ये बच्चे प्रैक्टिकल रूप से वहां जाके इंडस्ट्री में सीखने का काम कर सके और बालिकाओं के अंदर भी एक शानदार आत्मविश्वास दिख रहा है, उनको भी सपने साकार हों।
3: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों अग्रणी जिला बैंक कार्यालय कानपुर नगर द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड NCGTC, राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC, लीड बैंक एवं जन समर्थ PSB अलायंस के मध्य समन्वय से ECLGS 5.0 योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र कुमार सिंह, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS के अवर सचिव शैलेंद्र कुमार एवं विशेष कार्याधिकारी OSD मधुरिता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान ECLGS 5.0 योजना MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा रोजगार एवं औद्योगिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा बैंकों के पात्र इकाइयों तथा योजना का अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए सक्रिय प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया। SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया।
5: इस स्कीम में जो MSME सेक्टर है, जो भी वो लोन बैंक देंगे, MFI देंगे बल्कि, वो टोटल 100% सिक्योर्ड है और नॉन MSME के लिए 90% तक इसको क्रेडिट गारंटी भारत सरकार दे रही है, जिसका कोई भी फीस किसी भी कस्टमर को नहीं देना है।
2: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
6: रामपुर में उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों में पॉली हाउस, शेड, नेट हाउस की स्थापना, मशरूम उत्पादन इकाई, स्पॉन मेकिंग इकाई, कोल्ड रूम एवं कोल्ड स्टोरेज जैसे कई कार्यक्रम सम्मिलित हैं। अधीक्षक राजकीय उद्यान अजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा इकाई लागत का 40-50% तक अनुदान अनुमन्य है। जनपद में ईद उल अजहा का त्यौहार श्रद्धा, पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने बारगाहे इलाही में सिर झुकाकर मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए खास दुआएं की। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बेहद मुस्तैद नजर आई। शहर के संवेदनशील इलाकों, ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रामपुर में अत्यधिक गर्मी और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। हालांकि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं ने अपने अपने केंद्रों पर नियमित रूप से उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निर्वहन किया। जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही पाई गई। लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्य में शिथिलता बरतने वाली आशाओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित 7 आशाओं की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई। ICDS विभाग द्वारा बनाए जा रहे गोल्डन आयुष्मान कार्ड की समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने CDPO मिलक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही CDPO मिलक एवं CDPO बिलासपुर का 3-3 दिन का वेतन बाधित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना में शानदार प्रदर्शन किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने योजना के तहत अपना 100% लक्ष्य प्राप्त किया। वर्तमान में जिले के कुल 70,000 से अधिक पात्र बुजुर्गों को पेंशन का सीधा लाभ मिल रहा है। अपात्रों की छटनी करने के साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए हकदारों को उनका अधिकार दिलाने का काम भी तेजी से हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को न्यायालय ने 2 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आजम खान द्वारा साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था। थाना क्षेत्र भोट अंतर्गत चुनाव प्रचार करते हुए उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की थी। न्यायाधीश शोभित बंसल न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम MPMLA कोर्ट रामपुर में विचाराधीन था। ADGC संदीप सक्सेना ने बताया कि आजम खान को इसमें दोष सिद्ध करार दिया गया है।
7: MPMLA जो स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट है रामपुर में, श्रीमान शोभित बंसल जी की, उनके द्वारा सजा सुनाई गई, जिसमें हर धाराओं में 2 साल की सजा और 5,000-5,000 रुपए का जुर्माना आजम खान के ऊपर डाला गया।
6: जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जनपद स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 3 वाहनों को ओवरलोड पाया गया। इसके अतिरिक्त 25 डंपरों में कमियां पाई गईं। प्रशासन ने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वाहनों में रेता, बजरी अथवा अन्य सामग्री निर्धारित क्षमता से अधिक न भरें तथा डंपरों का संचालन निर्धारित गति सीमा के अंतर्गत करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
8: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए देश का।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

मक्ता पेश है। चंद लम्हात की लग्जिश में

0: अभी आप जनाब अकील नुमानी के कलाम से महजूज़ हो रहे थे और इसी के साथ अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज से दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम।
2: मीडिया वेब 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र प्रस्तुत है कार्यक्रम समाचार दर्शन।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में कृषि और बागवानी में मददगार बन रही है सरकार। विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। इनमें कृषि क्षेत्र की खास भूमिका है। ऐसे में देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में योगदान देकर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। औद्यानिकी के क्षेत्र में भी देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को भी बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। इस संबंध में प्रस्तुत है आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा की विशेष बातचीत।
1: कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा। मनीष जी, सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?
2: सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। पूरे देश में न सिर्फ कृषि में बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे कि मेडिकल रिसर्च जिसमें ICMR, इंडस्ट्रियल रिसर्च है जिसमें CSIR, और जो कृषि का शोध है जिसमें कि ICAR, जैसे संस्थान रोज नवाचार कर रहे हैं और नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। इन तकनीकियों के माध्यम से स्टार्टअप का बहुत सारा सृजन हो रहा है। अब भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का देश है और लगभग समय 5,000 स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं, बहुत बड़े, जैसे कि देहात है, निंजा कार्ट है, ऐसे तमाम स्टार्टअप आज इस देश में विकसित हैं। और ये तब संभव है जबकि कृषि तकनीकी नवाचार के माध्यम से विकसित हो गई हैं और इनके माध्यम से एक बहुत बड़ा जो पैमाने पे लोगों तक पहुंचने का, डिजिटाइजेशन का, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, AI लेड प्रिसीजन फार्मिंग का एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया है।
1: जी मनीष जी, एक खास रुझान जो देखने को मिल रहा है कि जो आजकल के युवा हैं वो पढ़ाई करके हायर स्टडीज करने के बाद भी जॉब करने के बजाय कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कोई युवा अगर स्टार्टअप के तौर पर कृषि को अपनाना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है?
2: मुझे लगता है कि कृषि आज भी इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। आज सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट आता है वो कृषि से आता है और जो स्टार्टअप की संभावनाएं हैं, जो बिजनेस की व्यवसाय की संभावनाएं हैं, वो सबसे बड़ी कृषि में है। तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके, उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली, तो इसमें कभी कोई कमी नहीं आ सकती। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा आकर के एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में बहुत सारे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM में बहुत सारे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको तकनीक के माध्यम से, आपको फंडिंग के जरिए, आपको तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी युवा किसी भी जगह, जहां भी रहता हो पूरे देश में, वो अपने पास का जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको संपर्क कर सकता है, उसके माध्यम से एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
1: जी, खासतौर से अगर फसलों की बात करें कि एक रूटीन जो हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनके अलावा भी बहुत तरह की फसलें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो आमदनी को बढ़ाती हैं, तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और उनकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में?
2: मुझे लगता है कि सारी फसलें आपकी अच्छी होती हैं, उसमें कोई फसलों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या है, डिमांड और सप्लाई का जो गैप होता है उसका अध्ययन करना जरूरी है। किसी भी जगह में आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। कहीं भी, बहुत बड़ा देश है तो उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अलग अलग होती हैं, तो एक जवाब तो इसके लिए मुफीद नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी फसलों को नेट हाउस कंडीशन में उगा सकते हैं जबकि वो सामान्य दशाओं में उगाई नहीं जा सकती, तो उनमें आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे किसान खीरे की खेती करते हैं एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, टमाटर की खेती करते हैं, अन्य सब्जियों की खेती करते हैं जिनको उनको अतिशय लाभ होता है। तो ऐसी फसलों के चुनाव के लिए क्या करना होगा कि आपको वहाँ के जो किसानों का जो भी वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, चाहे वो ICR का हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे एक पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि इस समय में इस वातावरण में मैं कौन सी ऐसी खेती कर सकता हूँ कि मुझे अधिक लाभ हो। तो इसके लिए जो है एक मतलब एक सामान्य उत्तर नहीं हो सकता कि पूरे देश में कौन सी फसल फायदेमंद होगी, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों पे निर्भर करेगी।
1: जिस तरह से आपने कहा कि इंक्यूबेशन सेंटर से मदद मिल सकती है, इसके अलावा किस तरह का टेक्निकल सपोर्ट या किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है किसानों को जिससे वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके?
2: मतलब कौशल विकास भारत सरकार का एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। हम लोग कौशल विकास पे बहुत काम करते हैं, जितने भी भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन है सारे के सारे कौशल विकास पे काम करते हैं। उनमें हम युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति के किसानों को के अलावा बहुत सारे अलग लोगों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला करके इन लोगों को हम कैपेसिटी बिल्डिंग, और ये बहुत विविध क्षेत्रों में है। इसमें चाहे आप ले लीजिए कि प्रिसीजन से जुड़ी हुई खेती है या फाइबर से बने हुए उत्पाद हैं, ज्वेलरीज हैं, चाहे महिलाओं के लिए हों या पुरुषों के लिए हों, युवाओं के लिए, तो बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं जिनमें वे आकर के यहाँ पर अपनी प्रशिक्षण लेकर के अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और इस ट्रेनिंग के माध्यम से वे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं जहाँ पर कि वे एक स्टार्टअप के रूप या एक व्यवसाय के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते।
1: जी मनीष जी, जैसे कि एक टेक्निकल सपोर्ट की बात करी हमने, तो ये जो सॉइल टेस्टिंग पे काफी जोर दे रही है गवर्नमेंट कि आप सॉइल टेस्टिंग कराइए और आपकी सॉइल में कौन सी फसल अच्छी उपज हो सकती है और किस तरह की कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये क्या प्रोसेस है और इससे किस तरह की मदद मिलती है?
2: ये बड़ा अच्छा प्रश्न है क्योंकि एक समय ऐसा हो गया है कि हम लोग बहुत सारा खाद को देते हैं अपने भूमि में जिसकी उसको जरूरत नहीं, और इसमें हमारा क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, किसी लागत जो है पूरी खेती की पड़ जाती है, तो उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले किसान को क्या करना है कि अपने जो अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, जो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और सबसे पहले अपने खेत का सॉइल टेस्टिंग कराएं। इससे आपको पता लगे

0: हो, उनके केंद्रों में ये सुविधा हमेशा उपलब्ध होती है। तो कोई भी किसान आकर के अपना मृदा का जो सैंपल है वो दे सकता है और उसकी टेस्टिंग हो सकती है।
1: जी, तो जब एक सरकार की मदद से और तरह तरह की योजनाओं का लाभ उठाते हुए कोई किसान फसल उगाता है, तो क्या उनकी फसल को बेचने या उसकी ब्रांडिंग में भी सरकार की मदद मिलती है?
0: महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें बहुत सारे जो भारत सरकार के विभाग हैं वो काम करते हैं। इसमें बहुत सारा मार्केटिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनाम है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, वो सारे लोग काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विषय है, तो हम लोग चूंकि टेक्नोलॉजी डेवलपर होते हैं एक विषय, तो बहुत सारा काम हम लोग मार्केटिंग में नहीं करते। लेकिन अगर कोई किसान अपनी फसल को बेचना चाहता है तो बहुत सारे डिजिटल माध्यमों से हम लोग अपने उन किसानों को FPO के माध्यम से, FPC के माध्यम से, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उन किसानों को जोड़ करके उनकी मार्केटिंग में हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं।
2: समाचार दर्शन की संख में आप सुन रहे थे, कृषि और बागवानी में मददगार बन रही है सरकार। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का अंक। संपादन प्रेमचंद्र गुप्ता और वाचन वेद प्रकाश पाठक।
3: अभी आप सुन रहे थे समाचार दर्शन, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्स के साथ FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:59 और 42 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आओ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान शेरोवाली कल लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम घने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए अभियान चला रही है। व्हाइट नाइट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा ने कल नियंत्रण रेखा से जुड़े अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था तथा सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया।

0: है। विद्यार्थियों और पुनर्मूल्यांकन विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य गठन दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में तेलंगाना वासियों की प्रगति और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली सांस्कृतिक साहस दृढ़ संकल्प तथा संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने तेलंगाना वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। और खेलों में 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीइंग डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। इस समूह में पेरिस 2024 ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में 2022 के रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और 2022 के दोहरे पदक विजेता जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज बेहतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम हिप 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते हैं।

आशा भोसले को सुन रहे थे फिल्म उम्र आओ जान में। शहरयार के लिखे बोल को संगीत दिया था खय्याम ने। आइए एक बार और आशा भोसले को सुनते हैं फिल्म इजाजत में। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म नमक हलाल से। अनजान के लिखे गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने और आवाज किशोर कुमार की।

और आइए आपको लता मंगेशकर को सुनाते हैं फिल्म घर में। गुलजार के लिखे गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म घर में। आइए इसी फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना गुलजार की और संगीत आर डी बर्मन का।

और आइए लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म बसेरा में। गीत लिखा है गुलजार ने और धुन तैयार किया है आर डी बर्मन ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार में पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का

0: इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज इटली के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 73,945 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक लुढ़ककर 23,229 पर कारोबार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:05 हो रहे हैं। अब वक्त हो चला है लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग का। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में।
2: बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में आज की कलाकार हैं शारदा सिन्हा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक,
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आज आप सुन रहे हैं शारदा सिन्हा को।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के कलाकार थे शारदा सिन्हा। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब चलते हैं गीत और संगीत के कार्यक्रम के सफर पर और सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब से कुछ ही पलों में।
1: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
0: आकाशवाणी गोरखपुर के प्रिय कार्यक्रम गीतांजलि में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी प्यारी होस्ट अमृता और आज हम बात करेंगे अपने पर्यावरण पर। पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। धरती हमारी है, आसमान हमारा है, नदियां हमारी हैं, पेड़ पौधे भी हमारे हैं। यदि प्रकृति मुस्कुराएगी तभी हमारा जीवन भी खुशियों से महकेगा। पर्यावरण केवल एक विषय नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली से भरी धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। इसी संदेश के साथ आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में ये आपकी पसंदीदा गीत और साथ ही साथ बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए सुनते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक से ये गीत। आवाज़ दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। संगीतकार हैं आनंद श्रीवास्तव और गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं अपने पर्यावरण पर। कहा जाता है कि यदि एक पेड़ काटा जाता है तो उसके बदले कई पेड़ लगाए जाने चाहिए। पेड़ केवल छाया ही नहीं देते बल्कि हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। प्रकृति हमें बिना किसी अपेक्षा के बहुत कुछ देती है। स्वच्छ हवा, जल, भोजन का आधार भी यही प्रकृति ही है। हमारा छोटा सा प्रयास, जैसे पानी को बचाना या पौधे को लगाना, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बन सकता है। तो आइए इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सुरीले गीत की ओर। तो आइए सुनते हैं विकसित फिल्म से ये गीत। आवाज़ दी है कविता सेद, अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

0: आप?
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण पर। नदियां केवल जल का स्रोत नहीं है बल्कि सभ्यता की पहचान है। इनकी स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। जब नदियां स्वच्छ रहेंगी तब जीवन भी स्वस्थ रहेगा। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कितनी गर्मी पड़ी है इस समय, और अब जाकर थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ है। तो ऐसे में ऊर्जा की बचत और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारी स्वच्छता पर ध्यान देना, हमारी सोच, ये हमारे लिए बहुत अहम है और हम सभी के लिए बहुत अहम है। एक पौधा लगाना भविष्य को सुरक्षित बनाने जैसा है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है फटा पोस्टर निकला हीरो।

को स्वरबद्ध किया है आतिफ असलम ने और चिन्मय श्री प्रदा ने। लयबद्ध किया है प्रीतम ने और बोल हैं इरशाद कामिल के।

स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन का आधार है। यदि हम अपने आसपास सफाई रखें और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने तो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य दे सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था का कार्य नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब समाज मिलकर प्रयास करता है तब बदलाव निश्चित रूप से दिखाई देता है। हरियाली केवल आंखों को सुकून नहीं देती, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक पौधा लगाना भविष्य को सुरक्षित बनाने जैसा है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म है ये जवानी है दीवानी। इस गीत को गाया है श्री रामा चंद्रा मयनपति ने और शिल्पा राव ने। संगीत दिया है प्रीतम ने और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्या।

प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक विकास है। आधुनिकता और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण कोई अभियान भर नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक सोच है। यदि हम आज प्रकृति का सम्मान करेंगे तो कल प्रकृति हमें सुरक्षित और सुंदर जीवन का उपहार देगी। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है रुस्तम, गीतकार हैं मनोज मुत्तेश्वर, संगीतकार हैं आर्को और मुखर्जी, सुरों से सजाया है आतिफ असलम ने।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नहाटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
3: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन तथ्य कुछ और है।
2: जी।
3: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
2: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे?
3: बताइए।
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
3: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
2: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
3: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
2: जी,
3: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
2: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
3: तो ये तो

0: हुई पहली रोचक बात, अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात यह है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती, ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
1: जी।
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी,
1: श्रोताओं ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे
1: जी,
0: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
1: जी।
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
8: चलो चलो चलो
9: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
6: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया ये।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल-पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
9: लुई पाश्चर
2: सर,
9: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
9: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब। हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
9: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
3: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
3: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को

0: आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगे और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
3: देखिए आप,
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
5: मेरा
3: अच्छा,
5: बेटा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाज़ियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
6: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
0: हमारा देश भारत दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारत कई कारणों से दुनिया के सबसे अच्छे देशों में से एक है। सभी धर्मों का एक साथ रहना तथा यहाँ की पारंपरिक संस्कृति अपने आप में अनूठा है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है वीर ज़ारा, इसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, और गुरदास मान की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप सुनेंगे। संगीतकार हैं मदन मोहन और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

0: AIR at 90.
1: आज हम उन वीर शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हमें एक स्वतंत्र भारत की राह में मार्गदर्शन किया। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। आज हम सभी को अपने देश की स्वतंत्रता, गरिमा और एकता के महत्व को समझने की आवश्यकता है। हमें ये याद रखने और आप सभी को याद दिलाने की भी आवश्यकता है कि हमारे महानतम महान पुरुषों ने कितनी बड़ी संघर्ष की थी ताकि हम आज स्वतंत्र और गरिमामय भारत में जी सकें। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

हम उस दिन का जश्न मनाते हैं जब हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की थी, वह दिन जब हमारे पूर्वजों के स्वशासन के सपने हकीकत में बदल गए थे। वास्तव में यह था एक ऐसा दिन जिसने स्वतंत्रता की सुबह एक नई शुरुआत भारत के विशाल और विविध इतिहास में एक उपन्यास देखा था। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म है चक दे इंडिया, आवाज़ दी है सुखविंदर सिंह और सलीम मर्चेंट ने। संगीतकार हैं सलीम सुलेमान और गीतकार हैं जयदीप सैनी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत अब से कुछ ही पलों में।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details, log on to www.ddindia.com।
9: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: દીબા હાશમી છે. उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला कुशीनगर की तरक्की को नई रफ्तार देने के लिए आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की लागत वाले 278 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा. इस दौरान वजीर आला ने तमकोही राज में मुख्तलिफ महकमों की नुमाइश का मुआयना और स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए. वजीर आला ने आज इस मौके पर वहां मौजूद अवाम को खिताब भी किया. इस दौरान वजीर आला ने कहा कि आज कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट है. उन्होंने कहा कि हम किसानों के भी हक में काम कर रहे हैं.
1: कुशीनगर जनपद में किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है. अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं. बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सेलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं.
0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अफसरान को अहकाम देते हुए कहा कि हुकूमत की बहबूदी स्कीमों का फायदा हर अहल अफराद तक पहुंचना यकीनी किया जाए. कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद जनता दर्शन में तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी. दिक्कतें सुनने के बाद वजीर आला ने दरख्वास्तों के तस्वीर के लिए मुतल्लिका अफसर और पुलिस अफसरान को अहकाम दिया कि सभी दिक्कतों का तस्वीर मुकर्रर वक्त में मुनसिफाना और पुर इत्मीनान होना चाहिए. मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास प्रिंसिपल के तहत गुज़िश्ता 12 सालों में काबिले जिक्र तब्दीली हुई है. इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों ख्वातीन और नौजवानों की बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए कई जरूरी पहल की हैं. आकाशवाणी समाचार गुज़िश्ता 12 सालों में खसूसी शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है. आज ख्वातीन बाइख्तियारी की सिमत में हुई कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट.
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है. इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए. वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है. जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं. वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है. वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है. दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को मौजूदा पेन और पेपर की जगह कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान मुनक़िद करने का मतालबे वाली अर्जी खारिज कर दी है. अदलिया ने कहा है कि कंप्यूटर मबनी री एग्जाम मुनक़िद करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि इम्तिहान रद्द होने के बाद से कौमी एग्जाम एजेंसी पहले से ही चैलेंजेस का सामना कर रही है. उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल सिविल पुलिस और उसके मसावी ओहदों के लिए तहरीरी इम्तिहान 8, 9 और 10 जून को मुख्तलिफ अजला में मुतय्यन मराकज पर मुनक़िद होंगे. सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज एडिशनल सेक्रेटरी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने बताया कि ये इम्तिहान 2 शिफ्टों में मुनक़िद होंगे. 32,000 से ज्यादा ओहदों के लिए इस भर्ती से मुतालिक तफसीली मालूमात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी गई है. लखनऊ मेट्रो भी अब वन नेशन वन कार्ड ला रहा है. इस कार्ड के होल्डर मुल्क के किसी भी शहर में चल रहे मेट्रो में सफर कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपने कार्ड में बैलेंस रखना होगा. यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसी पखवाड़े में नया कार्ड लॉन्च करेगा. आज ज्येष्ठ महीने का 5वां बड़ा मंगल है. लखनऊ के अलीगंज वाके पुराना हनुमान मंदिर, नया मंदिर हनुमान सेतु, हनुमंत धाम, हजरतगंज वाके दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है. उत्तर प्रदेश के इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वैड ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के इल्जाम में आजमगढ़ से एक नौजवान को गिरफ्तार किया है. दस्ते ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ दहशतगर्दाना तंजीम हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का

बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। आजाद रहिए विचारों से, परंतु बंधे रहिए संस्कारों से। इसी सुविचार के साथ मैं लता चंदोला आ गई आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत लेके। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप ही के कार्यक्रम में आपका स्वागत। आंगन की मुस्कान है वो सृष्टि की आधार, आंगन की मुस्कान है वो सृष्टि की आधार, हर नारी का स्वस्थ रहना उसका है परम अधिकार। छोड़कर संकोच सारे, आओ उठाएं ये जिम्मेदारी, स्वस्थ रहे हर नारी, हो खुशहाल ये दुनिया सारी। तो बहनों, आप समझ ही गई होंगी कि सबसे पहले आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है रहे स्वस्थ नारी, ये है सभी की जिम्मेदारी। बहनों, कभी कभी जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं ना कि कोई गर्भवती स्त्री या वृद्धा होती है तो उसे लोग उचित स्थान पर बैठा देते हैं, या ट्रेन में यदि उन्हें ऊपर की सीट मिल गई है तो स्वतः ही उन्हें नीचे सीट दे देते हैं। यह हमारे सभ्य समाज की प्राकृतिक क्रिया है। वहीं कहीं कहीं हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं तो जो लोग ये चीज़ें तो छोड़िए उनके लिए उचित शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सरकार द्वारा बहुत से ऐसे कानून नियम बनाए गए हैं जो कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए उन्हें अधिकार मिले हैं। पर यह सोच क्या केवल सरकार के लिए ही होनी चाहिए या किसी डर से ही हमारे मन में ये बातें आनी चाहिए? सोचिए, क्योंकि यह एक अत्यंत शोचनीय विषय है। क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती कि सब इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्रकृति की सर्वोत्तम कृति जो नारी है उसको उचित सम्मान और उसके साथ साथ उसे स्वस्थ काया भी मिले। एक स्त्री अपने शरीर से ज़्यादा अपने घर के अन्य सदस्यों का ख्याल रखती है और अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज करने के कारण वह एनीमिया, अर्थराइटिस, प्रोटीन की कमी, माइग्रेन जैसी तमाम समस्याओं से घिर जाती है। ऐसे में घर के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह उनकी बातों पर ध्यान दे। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि घर के सदस्य बोल देते हैं, अरे तुम्हारे तो बस यहाँ पे दर्द होता ही रहता है, तुम्हारे तो ये होता ही रहता है, जब देखो तब कोई दिन ऐसा बीतता है कि जब तुम्हें ये चीज़ नहीं होती। तो नहीं, वो ऐसे ही नहीं बोल रही है। महिला का शरीर पूरा का पूरा हार्मोन्स पे निर्भर करता है, तो कभी उनको बहुत अच्छा महसूस भी होता है, कभी बहुत बुरा भी महसूस होता है, कहीं कहीं दर्द भी होता है। तो इनकी बातों को थोड़ा सा समझिए और सुनिए। कहीं खून की कमी बहनों को हो जाती है, यदि घर पे आपकी माँ, बहन या पत्नी, बेटी कोई भी है थकी थकी महसूस करती है, सांस फूल रही है, चेहरे की चमक गायब हो रही है, तो तुरंत उनका हीमोग्लोबिन चेक करवाएं। चलते समय हड्डियों से आवाज़ आना या उठने बैठने में दिक्कत होना तो तुरंत कैल्शियम के लेवल को चेक कराना चाहिए। नीचे झुकने में परेशानी, पैरों में पीछे की तरफ तनाव महसूस करना या किसी चीज़ में ध्यान केंद्रित ना हो पाना तो तुरंत विटामिन B12 का की जांच जरूर कराएं। प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में के उम्र के साथ साथ महिलाओं में जो हार्मोन्स बदलाव होता है वो स्वाभाविक है। ऐसे में उनकी हेल्थ के साथ साथ उनको मानसिक मेंटल सपोर्ट देना भी हमारा ही फ़र्ज़ बनता है, बड़ों का ही फ़र्ज़ बनता है या घर के अन्य सदस्यों का ही फ़र्ज़ बनता है। गर्भावस्था के दौरान एक स्त्री चाहती है कि उसका ख्याल सभी रखे, बस उससे थोड़ा सा पूछ लें कि तुमने दवाई खाई है कि नहीं, उसकी थाली में देख लें कि उसकी थाली पौष्टिकता से भरी है या नहीं। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो घर की सबसे प्यारी खूबसूरत कली कभी नहीं मुरझाने पाएगी। तन हो निरोग और मन में हो विश्वास, नारी के स्वास्थ्य में ही छुपा है घर का उल्लास। जागरूकता का दीपक हर ओर जलाना होगा, हर नारी को स्वस्थ और सशक्त बनाना होगा। बहनों, ये तो बातें हो गई भाई नारी के स्वास्थ्य की। अब हम थोड़ा सा गाने की तरफ बढ़ते हैं। जीवन में प्रियजन का साथ खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन जब अपनों जो दूर हो जाते हैं तो मन की भावनाएं गीतों के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। विरह, प्रेम और प्रतिज्ञा की ऐसी ही भावनाओं को बेहद खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करता है ये गीत, जिसकी फिल्म है दामिनी और गीत है, बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं।

बहनों, अब हम बात करेंगे महिलाओं का पोषण और दुग्ध उत्पादों के लाभ। भाई आप जो है देखा होगा कि भाई बहनों, महिलाएं जो हैं थोड़ा सा दूध जो पीने में थोड़ा सा संकोच करती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें खुद ही ख्याल रखनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम ना करें। एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और समाज की नींव होती है, इसलिए महिलाओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना बहुत आवश्यक होता है। हम महिलाओं के जीवन में किशोरावस्था, गर्भावस्था, मातृत्व की जो स्थिति आती है या उसके बाद रजोनिवृत्ति जैसी महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं, इन सभी अवस्थाओं में शरीर को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। यदि पोषण की कमी हो जाए तो एनीमिया, कमजोरी, हड्डियों की समस्या और कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगती हैं। बहनों, डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर, छाछ, घी महिलाओं के आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है हो, ये हमें ध्यान देना होगा। बहनों, कल ही देखिए हम लोगों ने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, तो वर्ल्ड मिल्क डे मनाने का ही कारण यही होता है कि हम ये चीज़ें जानें कि ये दूध जो है हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। कभी कभी हम लोग जो होते हैं ना, बच्चों को तो पिलाते हैं भाई, घर के जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको तो पिलाते हैं, लेकिन जो युवा अवस्था में हैं, जिनको जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं घर पर, जो सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को अवॉइड करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो है धीरे धीरे जो हमारी शरीर से कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी जो है वो कम होता चला जाएगा और हमारा जो है शरीर में हड्डियों के रोग बनते होते चले जाएंगे। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जबकि प्रोटीन शरीर वृद्धि और उत्कों को मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए डेयरी उत्पाद विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि ये माँ और शिशु दोनों को ही पोषण की ज़रूरत को पूरा करने में सहायता करता है। वहीं बढ़ती उम्र की महिलाओं में हड्डियों के कमज़ोरी होने की संभावना अधिक हो जाती है, इसलिए नियमित रूप से दूध और दही का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। बहनों, डेयरी उत्पादों के साथ, डेयरी उत्पाद का मतलब यहाँ पे ये है जो भी चीज़ जो दूध से बनती है। डेयरी उत्पाद के साथ साथ दैनिक जीवन में हमें हरी सब्जी, फल, साबुत अनाज, दालें, मेवे और जैसे पनीर है, और इन सारी चीज़ों का भी सेवन करते रहना चाहिए। तो आइए हम सभी महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार अपनाएं और डेयरी उत्पादों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ राष्ट्र की आधार है, ये बात को हमें सोच के चलना चाहिए। यदि हम ही स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा जो है घर की जो ढांचा है ना, वो कहीं ना कहीं ज़रूर हिलेगा, क्योंकि हम यदि चिड़चिड़ाएंगे, हमारी कमज़ोरी हमें लोगों को परिलक्षित होगी, तो अवश्य ही वो नुकसानदायक ही होगी। भाई आगे तो हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा गीत जो कि फिल्म साजन का है, जिसे गाया है अलका याग्निक ने। तू शायर है, मैं तेरी शायरी, आइए सुनते हैं।

बहनों, आजकल एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि धूप में हम लोग एकदम नहीं निकलना चाहते हैं, धूप से एकदम बचना चाहते हैं। भाई अभी तो सही है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह सुबह ही जो सूरज जो है इतने तेज़ निकल के चमक के आ रहे हैं कि ज़रा देर भी धूप में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये जो धूप में ना रहने की प्रवृत्ति है, मुंह हर समय ढककर, हाथ पांव ढककर जो हम लोग निकलते हैं, उसकी वजह से एक चीज़ की कमी हमारे शरीर में हो जा रही है, वो है विटामिन डी। और मतलब हम ये कहें कि बहनों का जो शरीर, हमारा जो शरीर है, वो अगर विटामिन डी और कैल्शियम नहीं है तो उसको खड़ा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार अपने साथ कई लोगों को मैं सुनने को सुनती हूँ कि भाई छोटी छोटी एज है, उम्र कम है और हड्डियों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, कैल्शियम खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ये दिक्कत हो रही है, ये परेशानी हो रही है, छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी यदि हमारे शरीर में नहीं होगा या कम होगा तो हम कैल्शियम कितना भी खाते रहें वो उसको अवशोषित नहीं करेगा। और बहनों, सबसे बड़ी बात है कि 40 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं में हड्डियों का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। रजोनिवृत्ति यानी मोनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी के विकल्प के तौर पे हम छाछ, दही, दूध, पनीर, छेना के साथ साथ सूखे मेवे, तिल कैल्शियम के रूप में ले सकते हैं। सुबह की जो धूप होती है उसमें हम थोड़ी देर बैठें। शाकाहारी हैं तो जैसे शाकाहारी यदि नहीं हैं तो फिश जैसे हम ले सकते हैं, तो यदि खा सकते हैं तो उसे हम खाएं, जिससे कि हमारा कैल्शियम और विटामिन डी का जो स्रोत है वो बना रहेगा। और बहनों, जैसे इस समय तो भाई बच्चों की स्कूल में छुट्टी चल रही है, कुछ महिलाएं जो वर्किंग हैं, जो स्कूल में पढ़ाती है, उनकी भी छुट्टी चल रही है, तो सुबह के समय में यदि हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं और 6 बजे के समय में भी यदि हम थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक में निकलें तो जो उस समय की जो धूप होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, और पता भी नहीं चलता है कि हम धूप में चल रहे हैं और धूप से हमारे जो है विटामिन डी की जो पूर्ति है वो हमें हो जाती है। तो यदि हम छोटी छोटी बातों का यदि ख्याल रखें ना, तो हम एक लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं। लेकिन अगर हमने इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो जो है हम बहुत जल्दी ही अपनी बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। भाई आज जो हम बातें कर रहे हैं सिर्फ महिलाओं की, तो चलिए अब एक और खूबसूरत सा गीत हम सुनते हैं, जो कि है गाना है लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से। इसकी फिल्म है मुझसे शादी करोगे और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का।

बहनों भाई, आज तो हम लोगों ने महिलाओं पर आधारित बातें करी और डेयरी प्रोडक्ट के बारे में भी बात करी। लेकिन अब आप ये सोचती होंगी ना कि ऐसी हम क्या चीज़ें खाएं जो कि दूध के अलावा या दूध का कोई विकल्प हो। तो आइए थोड़ी सी कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बता देती हूँ जो कि आप लोग खाकर अपने आप को कैल्शियम से परिपूर्ण रख सकती हैं। भाई दही में फेंट कर, भाई ताज़े फल जो हैं काट कर दही में फेंट लें और उसमें थोड़ा सा काला नमक ज़ीरा मिला के खा सकती हैं। फ्रूट योगर्ट बना सकती हैं, लस्सी, छाछ, पनीर टिक्का जो कि सबसे ज़्यादा सबको पसंद आएगा भाई बनाने में, खीर थोड़ा कम चीनी वाली, स्मूदी जिसमें दूध और फल आप डालकर बना सकती हैं। और आजकल हमारे भाई गोरखपुर में बाज़ार में मैंगो बहुत आसानी से मिल रहे हैं, तो मैंगो शेक, बनाना शेक या स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर भी आप पी सकती हैं। कस्टर्ड फलों के साथ यदि आप बनाएं, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दें, तो वो बच्चों के आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर बच्चे उसकी डिमांड आपसे ज़रूर करेंगे। पनीर टिक्का, पनीर की भुर्जी, पनीर सैंडविच जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बच्चों की और हम सबकी पसंद की चीज़ बन जाती है, उसे भी हम खा सकते हैं। पनीर रोल, फिर दही चाट बना सकते हैं। दही में आप तरह तरह के फ्रूट्स डाल लें, थोड़ा आलू डालें, थोड़े अलग अलग चीज़ें डालें। फिर है छाछ के साथ भुना हुआ पिसा चना, यदि हम डालकर उसमें थोड़ा काला नमक और जीरा डालें तो भी हम इसका आनंद ले सकते हैं। हंग कर्ड डिप के साथ हम सब्जियों को भी हम जो स्टिक्स बनाकर डाल सकते हैं और उसको हम खा सकते हैं। दूध और पनीर से बने हेल्दी स्नैक्स ना केवल स्वादिष्ट होते हैं बहनों, बल्कि शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन प्रदान कर हड्डियों और संपूर्ण स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि हम भरपूर मात्रा में दूध पिए या दूध के प्रोडक्ट्स हम लोग ज़रूर खाएँ। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो, उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना, क्योंकि जब नाकामियां पर चरम पर हो, जब नाकामियां चरम पर हो तो कामयाबियां बेहद करीब होती हैं। इसी बात के साथ अब अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी इस समय आपसे विदा लेने के लिए बोल रही है। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी। आज का विषय है खरीफ सब्जियों की प्रजातियां। इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव से विनय कुमार।
1: सब्जी का उत्पादन बारहमास कईल जाला, खास तौर से जब खरीफ ऋतु में सब्जी लगावला का बात आवेले तो एकर तैयारी पहले से करे के पड़ी। काहे कि बहुत ऐसन सब्जी बाड़ी जौन जायद में भी उत्पन्न होली और उहे सब्जी बा तवन खरीफ में भी लगेला। प्रजाति अलग हो सकेला, ओकरे प्रजाति का विशेषता अलग हो सकेला, लगावला आ तैयारी का समय अलग अलग हो सकेला। लेकिन जौन खरीफ में सब्जी लगावल जाला ओकर प्रजाति का है, बहुत लोग हों कि जायद में लगाए वाली खरीफ में, खरीफ वाला जायद में यह तरह से लगा देला, पौधा तो खूब बढ़ेला लेकिन उसमें बतिया ना लगी। अगर बतिया लगतो बा तो मर गई या कम उत्पादन मिलल, तो अभी पर्याप्त समय बा कि खरीफ में कौन कौन सब्जी का खेती करे के चाही और बढ़िया प्रजाति का है। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव कृषि विज्ञान केंद्र मलहना जनपद देवरिया से फोन लाइन पर जुड़ल हूँ आ एक करे बारे में विधिवत जानकारी डॉक्टर साहब दें।
2: ये देखा गया कि जो हम ज्यादातर वो सब्जियां जो जायद में होती हैं वही खरीफ में भी होती हैं। तो जायद में और खरीफ में प्रजातियां कोई किसी किसी की कोई प्रजाति अलग नहीं, तो करीब करीब प्रजातियां वही यूज होती हैं, वही प्रयोग की जाती हैं। अब ये देखा जा रहा है कि जो खरीफ मौसम आने वाला है इसमें जो प्रमुख फसलें हमारी अब लगाई जाएंगी उसमें आपको भिंडी है, बोड़ा या जिसको हम लोबिया कहते हैं, और कद्दू वर्गीय सब्जी सारी जैसे लौकी है, कोहड़ा है, तरोई है, करेला है, खीरा है, ये सारी जो है सब्जियां खरीफ मौसम में फिर लगाई जाएंगी। इसमें अगर आप देखा जाए जो अच्छी प्रजातियों को ज़्यादातर किसानों को अगर देखा जाए तो बाजार से संकर प्रजाति का ही उपयोग करते हैं और उसका उपयोग करके और अपने खेत पे लगाते हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी उनको संकर प्रजाति सही नहीं मिलती और उसको उनको समस्या होने लगती है और उसका बीज जो है वो अपने पास नहीं रह सकते। तो आज हम कुछ ऐसी प्रजातियों का चर्चा करेंगे जो प्रजातियां आपको संकर प्रजातियों के आसपास की उपज देती हैं और उनका अगर आप बीज बना लेते हैं तो आप उनको अपने अगले सीजन में लगा भी सकते हैं। इस दिशा में जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी है जिसी का ये कृषि विज्ञान केंद्र देवरिया वहीं से गवर्न होता है, वहीं से इसका जो है प्रशासनिक नियंत्रण है, वहाँ से जो निकली हुई प्रजातियाँ जो पिछले कई सालों से पृथक परिश्रम द्वारा वैज्ञानिकों के और सब्जियों की नई प्रजातियाँ निकाली गई उन पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं बोड़ा या लोबिया पे। लोबिया की प्रजाति देखिए आप पूरे जो है अपने भारत में और खास करके अपने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में सबसे लोकप्रिय जो प्रजाति है वो काशी कंचन के नाम से जानी जा रही है। काशी कंचन जो है बौनी किस्म की प्रजाति है जिसके 60 सेंटीमीटर करीब होती है ऊंचाई और उस पर 30 से 45 सेंटीमीटर लंबे जो है बोड़े लगते हैं, कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं और इनकी पैदावार अच्छी होती है। और सबसे अच्छी बात है कि कम दिन में ये 45 से 55 दिन के अंदर 45 दिन के अंदर करीब फूल आता है और 54-55 दिन में हमें हार्वेस्ट शुरू हो जाती है और 2-3 फसल लेकर के 70-80 दिन के अंदर खाली करके हम चाहे तो तुरंत अगली फसल जो है वो ले सकते हैं। जैसे अगर हम सब्जी की खेती की बात हो रही है तो अगर सब्जी खेती लें तो हम बोड़ा लगा करके और उसके बाद तुरंत हम मटर की खेती या फूल गोभी की खेती करके हम 2 फसल आसानी से लेकर के लाभ ले सकते हैं। दूसरी प्रजाति भी अभी निकली हुई है काशी निधि, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। काशी निधि की फलियां अपेक्षाकृत थोड़ी सी बड़ी हैं और मुलायम है, इसमें बीज थोड़ा कम बनता है इसलिए रेशे की जो है मात्रा कम है। तो इसको आप काशी निधि और काशी कंचन दोनों प्रजातियों को लोबिया के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरी फसल आ रही है भिंडी। भिंडी के लिए काशी क्रांति और काशी प्रगति ये 2 अच्छी प्रजातियां जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, अच्छा उत्पादन दे रही हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। ये भी अच्छी है, इसमें भी आप 50 से 55 दिन के अंदर जो है हार्वेस्टिंग हो जाती है और अर्ली एकदम आपको भिंडी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर हम बात करें तो कद्दू वर्गीय सब्जी में अगर हम कोहड़ा लेते हैं, कोहड़ा तो कोहड़े में भारतीय सब्जी अनुसंधान द्वारा संस्थान द्वारा विकसित जो है काशी हरित प्रजाति जो छोटी 1.5 से 3 किलो की फसल होती है और उसकी जो लतर है जो बेल है वो भी छोटी होती है और एक बेल में जो है चार से पांच फल बढ़िया से मिल जाते हैं, उसको थोड़ा सा नजदीक लगा करके बढ़िया करके, तो आपको एक जो हरा कोहरा जो बाजार में आता है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त प्रजाति है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें लौकी, लौकी में जो है अगर आप प्रजाति के देखें तो काशी गंगा एक प्रजाति है, और अगर हम काशी बहार एक संकर प्रजाति भी विकसित की है, कि जो आप हाइब्रिड बात करते हैं किसान, तो उसमें जो है वो एक काशी बहार प्रजाति का भी उपयोग कर सकते हैं। और अन्य जो है जैसे कि हमारा एक बहुत ही थोड़ा सा अलग टाइप का खेती है पेठा कद्दू की, कुछ एरिया में पेठा कद्दू की खेती बढ़िया की जाती है, और बरसात में जहाँ पे आपके खेत में थोड़ा ऊंचास हो और बहुत बढ़िया खेत नहीं है आपका, जैसे पुराना टीला हो या इस तरह का या कुछ, तो वहाँ पे आप अगर आप छपरावा कद्दू जिसको देहात में कहते हैं पेठा कद्दू की खेती कर लें, उसके लिए काशी उज्ज्वल एक प्रजाति है और उसको आप लेकर के लगा सकते हैं, और काशी धवल, दो प्रजातियां जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं। अब अगर हम आते हैं करेला में, करेला में देखा जाए तो दो तीन प्रजातियां जो है, एक बरसात के लिए जो झालरी प्रजाति जिसको कहते हैं या जौनपरी लोकल जो बड़ी वाली प्रजाति है उसको ज्यादा डिमांड करते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। नेनुआ, नेनुआ में जो है वो जो दो तरह की नेनुआ होती है, एक कुछ हरी होती है एक सफेद होती है, तो सफेद नेनुआ में और सफेद नेनुआ के लिए काशी ज्योति और हरे नेनुआ में कुछ अच्छी प्रजातियां निकली हैं, जैसे काशी सौम्या और काशी रक्षिता, इसमें एक संकर भी है, और इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से खीरा में जो प्रजाति है उसके लिए आप लोकल प्रजाति का उपयोग करें जो हो, और एक स्वर्ण अगेती नाम की प्रजाति है उसका उपयोग किया जा सकता है। एक नई प्रजाति अभी और को वहाँ से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से अभी डेवलप की जा रही है, विकसित की जा रही है, उसके बीज भी आपको अगले साल से मिल सकते हैं। और एक सत्तुतिया होता है जो इस अपने इस क्षेत्र की खास करके पूर्वांचल की बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है, छोटी वाली सत्तुतिया गुच्छे में फैलती है, उसके लिए काशी खुशी नाम की प्रजाति है, आप इसको लेकर के लगा सकते हैं। तो ये सारी जो प्रजातियां हैं ये सीधे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से ली जा सकती हैं, या उसका जो रीजनल सेंटर है उसका जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान उसका है कुशीनगर में, सरगटिया कुशीनगर में, वहां से ले सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र देवरिया जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के नियंत्रण में ही है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इन तीनों जगह से कहीं से भी इसके बीज ले सकते हैं। आप सीधे जो है निदेशक महोदय को चिट्ठी लिख करके या मेल लेकर के आप अपने पास भी बीज मंगा सकते हैं। तो ये कुछ प्रजातियां थी जिन जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित है, इनका आप उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप इतना अच्छा जानकारी दिलीं कि खरीफ में उगाए वाली सब्जी का प्रजात कौन कौन ह आ एके कैसे प्राप्त कैल जा सकेला, एकर पहचान का ह, एकर विशेषता का ह, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी तथा हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: should isolate themselves and inform local health authorities. The ministry has also urged citizens to call the helpline number 1075 for information, guidance and assistance. It emphasized that early reporting is crucial for saving lives and preventing the spread of the disease. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The anti-terrorism squad of Uttar Pradesh has arrested a young man named Mohammad Sheikh from Azamgarh, allegedly linked with Pakistani gangster Shahzad Bhatti. The ATS received the information that Pakistan's ISI and terrorist organizations were collaborating with Bhatti with the aim of spreading terror and threatening India's sovereignty, unity and territorial integrity. More from our correspondent.
1: As part of this conspiracy, the terrorist gang was instigating persons to conduct unlawful acts. This intelligence was developed through electronic and physical surveillance and investigative efforts. During the inquiry, Mohammad Sheikh, resident of Azamgarh district, came to light. He had connected with Shahzad Bhatti's terrorist gang via WhatsApp using Pakistani and Dubai phone numbers and through their social media accounts. Handlers of Shahzad Bhatti's gang had assigned Mohammad Sheikh to threaten and assassinate a female leader of a political party from another state. Mohammad Sheikh had arranged a 9mm pistol and was preparing to execute the plan to murder Sushil Chandra Tiwari. Akashwani News, Lucknow.
0: The Enforcement Directorate ED is conducting massive search operations at 20 locations across Mumbai, Surat, Ankleshwar and Rajkot against a transnational organized narcotics trafficking syndicate operated by Salim Ismail Dola and his associates. According to the Enforcement Directorate, investigations have uncovered a highly organized transnational criminal network. The network was involved in procuring precursor chemicals and clandestinely manufacturing methadone, also known as MD. It allegedly transported and distributed narcotic drugs across states and trafficked narcotic substances internationally. The probe has also revealed the use of hawala channels to collect and layer proceeds of crime. The government extradited Salim Dola last month from Turkey. He is a close aide of Dawood and operated a transnational network of drugs. The Directorate of Revenue Intelligence has busted a gold smuggling syndicate at Mumbai International Airport and seized 2.6 kilograms of foreign origin gold valued at around 4 crore 20 lakh rupees. Based on specific intelligence, DRI officials yesterday apprehended two passengers while they were attempting to smuggle gold into India from Dubai. During examination, officials recovered two pouches containing gold dust in wax form. The agency said the investigation led to a Navi Mumbai-based jeweler who is suspected to have conspired with accomplices to smuggle the gold into the country. Congress leader Shanimol Usman has been elected as the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in Kerala. Shanimol Usman got 99 votes and opposition candidate Mohammad Mohsin got 34 votes. All the three BJP members abstained from voting. The President, Vice President and Prime Minister have extended greetings to the people of Telangana on its Statehood Day. President Draupadi Murmu said Telangana is blessed with a rich cultural heritage and hard-working people. She said the state has made significant strides in innovation and development over the years. Vice President C.P. Radhakrishnan said, blessed with rich cultural heritage and vibrant traditions, Telangana has contributed significantly to the nation's progress. Prime Minister Narendra Modi reaffirmed the central government's commitment to providing full cooperation to the development movement of Telangana in the direction of realizing the dream of a developed India. He prayed for good health, happiness and success for the people of Telangana. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today extended greetings to Italy on the occasion of its National Day. In a social media post, Dr. Jayashankar expressed confidence that the special strategic partnership between the two countries will continue to grow from strength to strength. In West Asia, attention remains focused on Lebanon after a fragile U.S.-brokered arrangement between Israel and Hezbollah raised hopes of easing tensions in the region, though fresh violations have cast doubt over its durability. Lebanese officials say Hezbollah has accepted a U.S. proposal under which the group would halt attacks on Israel, while Israel would suspend strikes on Beirut's southern suburbs, a Hezbollah stronghold. However, the understanding falls short of a comprehensive ceasefire, and clashes have continued in parts of southern Lebanon. U.S. President Donald Trump has described the development as an agreement to stop all shooting following talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and contacts with Hezbollah through mediators. However, Israeli officials have taken a more cautious position, saying military operations could resume if Hezbollah attacks persist. Soon after the announcement, the Israeli military reported intercepting projectiles fired from Lebanese territory, highlighting the fragility of the arrangement. More from our Dubai correspondent.
2: The fragile Lebanon de-escalation is unfolding against a far more dangerous diplomatic backdrop. Iran has formally suspended all dialogue and exchange of messages through mediators with the United States, citing Israeli operations in Lebanon, which Tehran had flagged as a precondition of any ceasefire agreement. Iranian sources linked to the resistance front have placed on their agenda the complete closure of the Strait of Hormuz and the activation of additional fronts, including the Bab el-Mandeb Strait at the mouth of the Red Sea, with the stated aim of punishing Israel and its supporters. Fighting in Lebanon presents a major obstacle in the emerging deal between Washington and Tehran, as Iran is insisting that any agreement must include a ceasefire in Lebanon. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: A delegation of Nepal's ruling Rashtriya Swatantra Party, led by party president Rabi Lamichhane, met BJP President Nitin Naveen in New Delhi today. The delegation was also scheduled to meet other senior leaders of the party. The visit seeks to initiate party-to-party engagement between RSP and BJP and provide an opportunity for exchange of views on organizational practices, democratic processes, and people-centric political outreach. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh during the day. While heavy rainfall will occur over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Haryana, Chandigarh, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. Hot and humid weather conditions will prevail over entire northeast, including coastal Andhra Pradesh, Odisha and sub-Himalayan West Bengal today. On to sports and women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and England will be played at Taunton in England tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. The series is level, with India winning the first match in Chelmsford by 38 runs and England levelling the series with a 26-run victory in Bristol. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan. Captain Ketan Kushwaha scored in the third and the 36th minute. Varinder Singh and Shah Rukh Ali scored the other two goals. Korea's lone goal came through Captain Yoon Jae-yok. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
4: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
3: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
4: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
4: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
3: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
3: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनकेंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। अगले प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए, विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का। जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहां पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
0: अच्छा
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की है वहाँ पे।
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचिन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
0: जी
1: और जसपाल मुनी जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी और बहुत गुणी म्यूजिक डर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
0: जी।
1: और जौहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफी चाहता हूँ। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
0: दर्जा
1: वर्चस्व रहा है दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है।
0: वाह।
1: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक

0: डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया, और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
1: अच्छा।
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के। मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी जी
0: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
1: जी जी
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गज़ल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज़ किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर,
1: ये सफर इस तरह से चलता रहा।
0: जी दिल्ली।
1: हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: जरूर।
1: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं
0: जी,
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। या आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं।
0: जी जी जी
1: है ना
0: जी। जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूं ना
1: जी,
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है।
1: क्या
0: पिताजी के साथ।
1: वाह।
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ।
1: वाह।
0: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान।
1: जी जी जी जी।
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के।
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह।
0: और ये जो थ्रेडिंग है
1: जी,
0: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा।
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
1: क्या बात है।
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु,
0: और वेणु क्योंकि मानसरी को वेणु भी बोलते हैं।
1: जी जी।
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों
1: जी,
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया।
1: वाह।
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की
1: जी।
0: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शरणी वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल।
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं
1: जी जी,
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी जी,
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं वो, एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी जी।
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें, उन्होंने राग मालकोस बजाया था
1: जी,
0: मेरे भाई ने राग हंसुदनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है।
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ।
1: जी जी जी, क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा,
1: जरूर
0: उनके बारे में भी बताऊंगा
1: जी।

0: जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर, और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले इस शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए,
0: जी
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचीन काम करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप ज़रूर भेजिए। वहाँ से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
0: अच्छा, हाँ, तो इस तरह से
1: मुंबई आना हुआ
0: जसपाल मोनी जी।
1: हाँ, इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
0: जी, जी।
1: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता
0: जी।
1: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
0: त्याग करना पड़ेगा।
1: तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
0: जी
1: उस चीज में मेरे लिए।
0: बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
1: बिल्कुल।
0: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
1: जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है
0: जी,
1: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
0: जी जी,
1: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
0: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
1: जी जी जी,
0: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
1: जी,
0: जी जी। और
1: ऊंचाई एक पिक्चर आई थी, ऊंचाई
0: जी जी, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे।
1: एक मिली पिक्चर आई थी
0: जी,
1: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
0: बाबा
1: मुन्ना भाई एमबीबीएस रिटर्न है,
0: क्या बात है,
1: दबंग 3 है, दृश्यम है,
0: ये तो बहुत लंबी फेरिस है,
1: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मन मर्जियां है,
0: वाह वाह,
1: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
0: हाँ दोनों पार्ट,
1: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
0: वाह वाह,
1: बहुत सारी पिक्चर हैं
0: जी, बिल्कुल
1: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
0: हाँ,
1: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है
0: जी जी बिल्कुल,
1: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है, तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूँ
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूँ
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं,
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है, करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट
1: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं, और दिलचस्प बात ये है कि हम विविध भारती में बैठे हैं जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहां हमेशा हूं आपके साथ।
0: हम बिल्कुल बिल्कुल हैं। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है
1: जी? पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है, और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह,
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री मुंबई इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते थे,
1: मेटल फ्लूट हो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह,
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है
0: जी जी,
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू
0: डिफरेंट है बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी बजाना होता है,
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
0: जी,
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी,
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी,
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकरेनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी,

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, उनके पास में गया था इटली में। वो
1: जी
0: एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज मेरे लिए एक मुझे दीजिए, क्योंकि मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की, एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी, एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर
0: और
1: था।
0: ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू,
1: जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं,
1: हाँ ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी,
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा ही रहा
1: जरूर
0: हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी निकल ले
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो गया।
1: सर एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी
1: मैं
0: जी।
1: बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने, तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा हूँ। सो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का,
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय की है जिंदगी में।
0: क्या बात है।
1: सो अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक
0: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है। ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
0: कहां से लाए?
1: नॉर्मल जहां से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा अच्छा।
1: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स, तो उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में।
0: जी
1: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे।
0: जी जी।
1: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
0: बिल्कुल
1: इसका साउंड में सुनाता हूं आपको
0: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इन टू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाई मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है, हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल बाकायदा
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाल ही नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल
0: साउंड जब उठा रहे कोई उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी जी।
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है,

0: ये स्टाइल है इसका,
1: वाह।
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है,
0: बहुत बहुत बजाया मैंने इसको
1: जी, फिल्म
0: म्यूजिक में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी।
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है,
1: बिल्कुल।
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल,
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: ये
1: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना,
0: जी
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए।
0: जी,
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी,
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर दे तो मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी जी
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह,
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी,
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी,
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा, पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादा निसा आप सेम बजा रहे। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूं।
0: जी,
1: सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है।
0: जी जी,
1: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।
0: वाह,

0: ये भी सारेगामा है,
1: जज्बात आ गए
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता
1: हुँ.
0: तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी,
0: वो नहीं होती है, तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ

0: एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा। तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए।
1: जी
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है, तो
1: आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती ही नहीं है। तो इस महफिल को यहाँ रोकते हुए
0: आपका आपका और इस, अच्छा। इस जगह का जादू ऐसा है कि मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव वैसा रहता है।
1: मैं समझ सकता हूँ।
0: आपका भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना। सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने,
0: नहीं जाने।
1: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो
1: और
0: मैं
1: एक गाने की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए फरमाइश भी आ गई।
0: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा, कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
0: हाँ, हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूं उनको शायद।
1: अच्छा। क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
0: कॉम्प्लीमेंट है।
1: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है।
0: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
1: जी
0: सो ये हीरो धुन
1: जी,
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। क्या आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी,
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को,
0: बिल्कुल
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है, ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग विद सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है, इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसे सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप।
1: खैर, ओ माई गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में। क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन
0: जी,
1: सिंगर
0: जी,
1: गा
0: जी,
1: जाते
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: ऐसे कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है।
0: जी
1: अब जैसे एक वो है एक कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके
1: तो ये एक थीम है। और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का
0: वाह वाह,
1: गाने में
0: बहुत शानदार पीस है
1: आपके लिए स्पेशली मोमो के धागे।

0: क्या बात है, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसजी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज के साथ साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। अब आरंभ होती है आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में दिल्ली केंद्र से समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपने देखने का अधिकार देती है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपकोसा माशातिले ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन-जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है।

0: जिसके अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शिल नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार, आज के शिववाणी कार्यक्रम में मैं प्रकृति आप सभी युवाओं का स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं आज के सुविचार से। साथियों, जीवन में जब भी विपदा की स्थिति आती है तो उस समय में हम अक्सर बहुत परेशान या घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला है खुद में संयम रखना। तो प्रयास करिए, कोई भी परिस्थिति आए, भीतर संयम ज़रूर रखें। ये था सुविचार, चलिए चलते हैं चर्चा की ओर। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास स्वयं के लिए समय ही नहीं बचा। तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक अशांति जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। साथियों, ऐसे समय में ध्यान यानी कि मेडिटेशन केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने की एक महत्वपूर्ण कला बन गया है। ध्यान मन को शांत करने और आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है। ये हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है, अनावश्यक चिंताओं और नकारात्मक विचारों से दूर रखता है। नियमित ध्यान करने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। इसके साथ ही यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि ध्यान तनाव को कम करने और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये किसी भी विशेष स्थान या संसाधन की इसको आवश्यकता नहीं होती है। कुछ मिनट शांत वातावरण में बैठकर श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से भी इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमारी सोच व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगता है। कहा जा सकता है कि ध्यान जीने की कला का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में ध्यान को अपनाएं तो न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित और आनंदमय जीवन भी जी सकते हैं। यही सच्चे अर्थों में जीवन जीने की कला है। ये थी साथियों चर्चा। इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे एक मनमोहक गीत और अब इसी के साथ चलते हैं चर्चा की ओर। साथियों, वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं के लिए अपने सपनों को साकार करने और उज्जवल भविष्य बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गई हैं। चाहे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी हो, उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लेना हो या किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाना हो, लगभग हर क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्व बढ़ गया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा शक्ति ही नहीं बल्कि सही दिशा में निरंतर प्रयास भी आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक सुनियोजित प्रक्रिया है। सबसे पहले परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति को अच्छी तरह समझना चाहिए। इसके बाद एक व्यवस्थित समय सारिणी बनाकर नियमित अध्ययन करना चाहिए और कठिन विषयों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ सभी विषयों का संतुलित अध्ययन आवश्यक है। साथियों, नियमित रूप से नोट्स बनाना, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करना और मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए समय प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम मन को एकाग्र रखने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी सफलता की कुंजी है। अंततः प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है बल्कि कठिन परिश्रम, अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो विद्यार्थी लक्ष्य निर्धारित कर समर्पण और लगन के साथ तैयारी करते हैं, वे निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। साथियों, चर्चा और भी होगी, इसी के साथ आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे एक मनमोहक गीत और अब इसी के साथ वक्त हो चला है चर्चा का। गर्मियों की छुट्टियां विद्यार्थियों के जीवन का सबसे आनंददायक समय होता है। पूरे वर्ष पढ़ाई और परीक्षाओं की व्यस्तता के बाद ये समय आराम करने, नई ऊर्जा प्रदान प्राप्त करने और अपनी रुचियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अक्सर बच्चे छुट्टियों का अधिकांश समय मोबाइल, टीवी या खेलकूद में बिताते हैं, लेकिन अगर इस समय का सदुपयोग किया जाए तो ये उनके व्यक्तित्व विकास और भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए गर्मी की छुट्टियां केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि कुछ नया सीखने का भी उत्तम अवसर है। छुट्टियों के दौरान विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कोई नया कौशल सीख सकते हैं। कंप्यूटर, कोडिंग, चित्रकला, संगीत, नृत्य, हस्तकला या नई भाषा सीखने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा पुस्तक पढ़ने की आदत विकसित करना भी अत्यंत लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इससे ज्ञान और कल्पना शक्ति दोनों का विकास होता है। गर्मियों की छुट्टियों में कुछ उपयोगी आदतें भी अपनाई जा सकती हैं, जैसे प्रतिदिन योग और व्यायाम करना, समय प्रबंधन सीखना, घर के छोटे छोटे कार्यों में सहयोग देना, पौधारोपण जैसी पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भाग लेना। इससे आत्मनिर्भरता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। विद्यार्थी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और शैक्षिक कार्यशालाओं का लाभ उठाकर भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। साथ ही अपने आसपास की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में जानना भी एक सीख आपको प्रदान कर सकती है। गर्मी की छुट्टियां केवल समय बिताने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का सुनहरा अवसर है। अगर हम दिनों में कुछ नया सीखने का संकल्प लें तो यह अनुभव हमारे जीवन का अधिक समृद्ध, उपयोगी और सफल बन सकता है। छुट्टियों का वास्तविक महत्व यही होना चाहिए। ये थी चर्चा। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे एक मनमोहक गीत और अब इसी के साथ चलते हैं चर्चा की ओर। विशेष तौर से एक अगर आप एक युवा हैं तो युवा होने के नाते अगर आपने कोई किसी भी एक कम उम्र में आपने कोई एक नौकरी पा ली है, हासिल कर ली है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आई। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी जगह पर पहुंचने के बाद आपका कार्य होना चाहिए कि आप वहां पर रुके मत बल्कि प्रयासरत रहिए। ये स्वाभाविक है कि आपके पास जिम्मेदारियां होंगी और आपके भीतर एक डर होगा कि अगर मैंने इस जगह को छोड़ दिया या मैं कहीं और काम करने लगा तो मेरा घर परिवार या जीवन कैसे चलेगा। लेकिन इसके साथ ही ये महत्वपूर्ण है कि आप उस जगह को एकाएक न छोड़िए बल्कि उस काम के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कौशल सीखने का प्रयास करिए। उस काम के रहते हुए आप प्रयास करिए कि कैसे आप अन्य जगहों पर अप्लाई करके अपने हाथ में एक नौकरी लेकर कुछ बेहतर जगह पहुंच सकते हैं। ऐसे में अगर आप इस कम उम्र में, इस युवा उम्र में अगर आप अपने आप को सीमित कर लेंगे, बांध लेंगे, तो आगे बढ़ने की आपकी सारी प्रक्रिया बंद सी हो जाएगी। इसलिए कोशिश करिए कि अगर आप एक युवा हैं, कौशल सीखिए और आगे बढ़ने की ललक अपने भीतर हमेशा बनाए रखिए। चर्चा और भी होगी, आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे एक प्यारा सा गीत और अब इसी के साथ वक्त हो चला है प्रश्नोत्तरी का। कल का प्रश्न था, ब्रिक्स में शामिल नया अफ्रीकी देश कौन सा है? ब्रिक्स में शामिल नया अफ्रीकी देश कौन सा है? तो साथियों, ब्रिक्स में शामिल नया अफ्रीकी देश मिस्र है। ब्रिक्स में शामिल नया अफ्रीकी देश मिस्र है। इसी के साथ साथियों, आज का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलजीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलजीव कौन सा है? साथियों, इसका उत्तर आपको कल के कार्यक्रम में मिलेगा। तो अब इसी के साथ आपकी दोस्त प्रकृति के जाने का वक्त हो चला है। मिलते हैं अगली बार कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।

आज का युववाणी कार्यक्रम लेकर आई थी प्रकृति। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पंचो जय हिंद। पंच भाई यही नारा के साथ अपन बैठकी शुरू भेल। आज कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा के विषय बा अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों क्षेत्रों की स्थिति में सुधार। ते विषय में हम जानल चाह प्रभात भैया कि सबसे बड़ी चीज़ बा कि देखी जब अल्पसंख्यक समुदाय के बात होला तो कहीं ना कहीं ए पे जागरूकता के तहत जौन बाटे आ एक स्थिति में कैसे सुधार होके पे जौन बा प्रधानमंत्री जी के तमाम प्रकार के योजना आवत रहला जिसमें मुख्य रूप से 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराओ के हमेशा निर्देश मिलत रहला। जिसमें देखल जा तो बुनियादी सुविधा जैसे सड़क पानी बिजली या सीवर एक एक कैसे बेहतर कल जा साथे साथे लोगों के आर्थिक विकास कैसे होके आ एमें कैसे सुधार हो और भी बेहतर हो सकला एक खातिर सरकार हमेशा पहल करेला आ कोनो कार्यक्रम लेके आवत रहला।
3: बिल्कुल शिक्षा और रोजगार के दिशा में भी सरकार के खास ध्यान बा और मलिन बस्ती में खास करके अलग अलग अभियान भी चलावल जाला समय समय पर एक खातिर सरकार गंभीर भी अभियान।
2: बिल्कुल बिल्कुल जोन शिक्षा रोजगार के बात भइल है ओमे मदरसा शिक्षा के कैसे आधुनिकीकरण होके साथ में अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्र जोन बने
3: उनके छात्रवृत्ति कैसे दिया जाए तकनीकी प्रशिक्षण कैसे दिया जाए उनकर कौशल के विकास कैसे होके भैया एहू विषय पर सरकार के बहुत ध्यान बा और तरह तरह की योजना चला के समय समय पर हम उनके बतावल भी जाला कार्यक्रम में ताकि अधिक से अधिक लाभान्वित लोग हो सके।
2: सबसे बड़ी चीज बा कि अल्पसंख्यक जोन बाटे रोजगार परक योजना एक प्रचार प्रसार कइल स्वरोजगार के माध्यम से एक जोन बाटे कैसे ऋण उपलब्ध करावल जा सकला ए विषय पे भी जोन बाटे हमेशा जानकारी अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमने हमेशा देत रहनी। स्वास्थ्य के जोन बाट बाटे कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS जोन कहल जाला एकरे तहत मलिन बस्ती में ओकरे साथे साथे आंगनबाड़ी केंद्र भी स्थापित कइल जाला।
3: सही कहल भैया 15 सूत्री कार्यक्रम भी सरकार चलावतिया जौन पर विशेष रूप से तरह तरह की योजना के बारे में जानकारी दिया जाला और एकर क्रियान्वयन भी समय समय पर सुनिश्चित करावल जाला।
2: सबसे बड़ी चीज बा कि जौन जमीनी स्तर पे विकास हो सकला ए मलिन बस्तियन के ए पे सरकार काफी गंभीर बा आ एकरे तहत तमाम प्रकार के जौन 15 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से चाहे शिक्षा भइल चाहे स्वास्थ्य भइल चाहे रोजगार भइल ये सब विषय पे जौन दिशा निर्देश दे रहल बा ई काफी जौन बा बेहतर बा। पंच भाई बात कही जारी रही अही सुनल जा पहले एगो लोकगीत।

0: पंच भाई सुनत गाना हरि प्रसाद यादव और साथी के आवाज में ही देशभक्ति गीत।
1: हाँ भैया, पूरा हरमन मनसाइन बैल दिया जाए इनके, धन्यवाद।
0: बिल्कुल
1: और भैया देखा, भवन निर्माण हेतु सुझाव पर हम इनके एक भेंटवार्ता सुनल जाए, और ए विषय पर जानकारी देवे खातिर इंजीनियर अनिल कुमार श्रीवास्तव स्टूडियो में आए हैं।
0: बिल्कुल
1: तो इनकर कई जा स्वागत, और इनसे बातचीत करत हूँ भैया
0: वेद
1: वेद
0: प्रकाश
1: प्रकाश श्रीवास्तव।
0: श्रीवास्तव।
2: पंच भाई हमन के अपने बैठकी में समय समय पर अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगन के बुला के आप लोगन तक जानकारी पहुंचौले के प्रयास कही जाला। यही क्रम में आज वरिष्ठ सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट अपने बैठकी में आई है अनिल कुमार श्रीवास्तव जी। आप भवन निर्माण में कोने कोने बात के ध्यान रखल जाए, यह पर आज हमन के बातचीत कही जाये। आपके इंजीनियर साहब अपने बैठकी में स्वागत बा। भवन निर्माण में सबसे पहले जो बात आवेला वो जमीन चयन के आवेला, तो जमीन चयन में कौन कौन बात के सबसे पहले ध्यान देवे चाहिए या का सावधानी रखल जाए?
3: जमीन पहले देखल चाहिए
2: जी,
3: जो जमीन समतल हो
2: जी, जी
3: गड्ढा गुड्ढी ना हो,
2: दलदल
3: ना हो
2: जी,
3: जल जमाव वाली स्थिति ना हो
2: जी जी,
3: ऐसने जमीन का चयन करे चाहिए। और जमीन कोशिश कर चाहिए कि वर्गाकार या आयताकार हो,
2: ताकि उसमें नक्शा बढ़िया,
3: हाँ, त्रिभुजाकार बहुकोणी इस तरह का कोनो जमीन ना हो
2: जी जी,
3: जन में नक्शा बनोले में आसानी पड़े और निर्माण लागत कभी ज्यादा ना पड़े।
2: सबसे पहले ये बात के ध्यान,
3: हाँ, ये बात
2: देवे
3: ध्यान
2: चाहिए। अच्छा, कई बार अपने चाहे शहर हो के चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो के किसान भाई या पंच भाई लोग जमीन उपलब्ध अगर है तो उन्हें का करेलन कि मिस्त्री बुला के राजमिस्त्री से काम शुरू करा देलन, लेकिन आजकल के समय में ही कहल जाला कि बिना कोनो कुशल इंजीनियर से नक्शा बनवाले मकान निर्माण भवन निर्माण शुरू ना करे चाहिए, ये पर आपके का सलाह?
3: हाँ, ये आवश्यक है, काहे से जमीन का समुचित उपयोग तबे हो पाई
2: जी, जी,
3: जब उपे कोनो अनुभवी इंजीनियर के द्वारा नक्शा बनवाल
2: जी जी,
3: उससे निर्माण लागत भी कम होला
2: जी,
3: ये से कि बार बार जो अनावश्यक तोड़फोड़ होती मिस्त्री अपन प्रयोग करी
2: हाँ,
3: उस प्रयोग से वंचित रहे तब जो है निर्माण लागत कम आए।
2: और इहो लोग कहलन कि नक्शा में सही तरीके से कमरा बरांडा चौका
3: हाँ
2: ई कुल
3: सही ढंग से समायोजित होला जिससे आगे के जीवन सुखमय जो है व्यतीत
2: हाँ,
3: हो
2: हाँ,
3: पावे।
2: अच्छा, भवन निर्माण में उसे पहले जमीन के चयन हो गई, आदमी नक्शा भी आदमी कुशल इंजीनियर से बनवा के बजट के अनुमान कैसे लगावल जाए?
3: बजट के अनुमान पहले तो हम अपन जरूरत का आकलन करब
2: जी जी
3: कि कई कमरा के चाहिए
2: हाँ हाँ,
3: फिर इसके बाद जो है वो कर विस्तृत जो है
2: हाँ, हाँ,
3: इस्टीमेट तैयार कर जाला
2: जी,
3: उसका प्राकलन कर जाला
2: हाँ,
3: कोनो अनुभवी इंजीनियर के सलाह लेके
2: हाँ,
3: उसे अनुमान लगावल जाये
2: हाँ,
3: कि
2: हाँ,
3: कितना लागत आवता, कितना गिट्टी लगी, कितना मोरंग
2: लगभग लागत,
3: हाँ लगभग लागत
2: जी, जी, हाँ,
3: 2-4% जो है
2: जी जी
3: उसको परिवर्तन हो सकला
2: हाँ, हाँ,
3: लेकिन लगभग लागत उकर आकलन हो सके
2: ताकि वो अपन बजट लेके चले,
3: बजट ले
2: चले जगह अवरोध
3: हाँ पता चले उकर अधूरे में काम रह जाए छतरे न पड़ पावे।
2: एक चीज लोगों के मन में ही संशय रहला कि जब भी मकान या भवन निर्माण के लोग शुरू करेलन तो कहलन कि जब ले आदमी सोची कि जले पूरा पैसा ना हो जाये तले शुरू ना करब ऐसे बढ़िया शुरू कर दे, तो का कोनो भी मकान दो भाग में भी बनावल जा सकेला, जैसे कुछ हिस्सा आज ये साल बन गए, कुछ हिस्सा जब उनके लगे पैसा भेल तो अगले साल बन गए, ये पर आपके
3: ज्यादातर कोशिश करे चाहिए कि दीवाल का काम तो एक साथ हो जाए,
2: दीवाल के काम
3: वो टुकड़े टुकड़े में हो सकला, लेकिन
2: जी,
3: फाइनल जब दीवाल चल जाए
2: जी,
3: तो छत का काम एक बार में
2: हाँ, हाँ,
3: तो ज्यादा अच्छा रहा
2: हाँ, हाँ।
3: दो बार कैले में दिक्कत ही होला कि लीकेज के चांस क्रैक होने
2: बरखा बुनी में,
3: बरखा बुनी में नीचे पानी जा सका, तो उसे बचने के लिए उपाय कर जाला कि कलम के तरह जैसे कलम बनती
2: हाँ,
3: है
2: हाँ, जी,
3: उसी तरफ से छत की ढलाई रोक देवल जाला, जब दूसरा छत पड़ी तो फिर हाँ, उल्टा कलम जो है उसके ऊपर लगाए देवल जाए
2: अच्छा, अच्छा,
3: तो उसे लीकेज के चांस कम रहा,
2: मतलब एक दूसरे से मतलब एकदम
3: हाँ, जब मान ली एकदम बजट ना
2: बा कोई जैसे कई बार ऐसा होला
3: हाँ, तो मजबूरी बस तो इसी यही तरीका अपनावे चाहिए।
2: सबसे बड़ बड़ चीज अभी आ जाला कि भवन निर्माण के जब शुरुआत होला तो ओकर शुरुआत न्यू से होला, तो न्यू डालत समय कौने कौने के बात ध्यान में रखे?
3: न्यू डालत समय सबसे पहला बात का ध्यान रखे पाई कि जितना ओकर भार बहन के लिए क्षमता बा
2: जी, जी,
3: मट्टी का हमके ओ लेवल तक खुदाई करे पड़ी,
2: तो एकर जानकारी कैसे?
3: जानकारी एकर तो एक तो मट्टी खुदाई हुई
2: हाँ, हाँ,
3: तो उसे अंदाज लग जाला
2: हाँ, हाँ,
3: कि जहाँ कोशिश कर जाए जहाँ बलुई मट्टी में
2: जी जी
3: बलुई मिट्टी का धारण क्षमता
2: हाँ, हाँ,
3: ज्यादा होला
2: हाँ,
3: और उकर बैठले का चांस
2: हाँ, हाँ,
3: कम होला
2: जी जी,
3: उकर बैठले क्षमता जोन है कम होला, तुरंत जोन बैठे कोई तुरंत बैठ जाए
2: जी जी जी,
3: इन आए कि 2-4 साल लगी बैठले में
2: हाँ, हाँ,
3: तो उसे जो क्रैक डेवलप होला
2: जी जी,
3: तो उसमें खत्म कर जा सकला ओके।
2: अच्छा, पहले मकान बनावत समय बीम नहीं पड़त, लेकिन अब हर घर में देखल जाता कि बीम जरूर पड़ता, एकर का कारण बा?
3: जैसे गोरखपुर जिला जोन है
2: जी जी,
3: भूकंप रोधी जोन के
2: जी जी
3: तीन जोन में आवला।
2: अच्छा,
3: ज्यादातर हिस्सा जोन तीन में आवला
2: जी जी जी,
3: और कुछ हिस्सा जोन चार में आवला
2: जी जी।
3: एकर मतलब मध्यम से ऊपर के भूकंप आवले के चांस बा
2: जी जी।
3: ऐसे आरसीसी निर्माण करते में कालम का निर्माण आवश्यक हो जाला, हर लेवल पर बांध दो जाला
2: जी जी
3: बीमे से, तो वो निर्माण भूकंप रोधी हो जाला
2: जी जी,
3: जिससे कि निर्माण लागत वो भी अपना खर्च के दे बा,
2: बीम बनले से।
3: हाँ, बीम बनले।
2: अच्छा, कलम और बीम में का अंतर बा?
3: कालम जो है ना, जो खड़ा मेंबर होता
2: कालम
3: है, हाँ, हाँ। खड़ा जो होता है
2: जी जी,
3: वो कालम कहलाता
2: जी जी,
3: और जो पट होला
2: हाँ हाँ
3: वो बीम कहला,
2: हाँ हाँ जी,
3: बीम या धरन कहला,
2: हाँ, दोनों में अंतर बा।
3: हाँ,
2: एकर मतलब का मतलब उपयोग होला, एकर कैसे अपन एकर कालम और बीम में मकान बना?
3: पहले कोनो लोड आवला, कोनो भार आवला, पहले छत पर आई
2: जी जी,
3: फिर छत का भार जो है बीम पर ट्रांसफर हो, धरन पर, और ओकर भार फिर कालम पर, पिलर पर ट्रांसफर हो
2: जी जी,
3: और फिर जो है लास्ट में अंतिम में ओकर फाउंडेशन जो है ऊपर जो है जमीन के पर भार ट्रांसफर हो जाला।
2: ये कालम और बीम में ही अंतर, हाँ, लेकिन हाँ, ये जरूरी भी बा।
3: हाँ,
2: जरूरी आज के समय में कौने मौसम में भवन निर्माण कई जाए तो अच्छा?
3: कोशिश कर जाए कि बरसात में भवन निर्माण न कर जाए। मान ले नींव की खुदाई होता, वही बीच बरखा हो गई तो सब पानी भर जाये,
2: हाँ, हाँ, जी, जी।
3: तो जितना मजदूरी रहा सब हाँ, बर्बाद हो गया
2: जी।
3: तो कोशिश कर जाए कि बरसात में,
2: बरसात के बाद,
3: बरसात के बाद काम चालू कर जाए
2: जी जी।
3: अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता हाँ, तब वो काम न कर जाए
2: जी जी।
3: कैसे उसमें तरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े
2: जी जी।
3: अगर पानी की सुविधा मोटर पंप सब नहीं बा
2: हाँ, हाँ,
3: देहात में
2: हाँ,
3: तो में दिक्कत।
2: अच्छा, कभी कभी नए घर के निर्माण भइल लेकिन एक के दो साल में फर्श बैठे लगेला, एकर का कारण?
3: ओकर कारण ई बा कि फर्श में हमेशा बलुई मिट्टी का या बालू का इस्तेमाल हो
2: जी।
3: जो मिट्टी भराव होला
2: जी
3: कुर्सी के अंदर, वो बलुई मिट्टी के भराव हो
2: जी जी।
3: बलुई मिट्टी के खासियत है को तुरंत बैठ जाला, जो बैठे को ही बैठ जाये।
2: हाँ,
3: एक जो विपरीत
2: हाँ, हाँ।
3: मटियार अगर मिट्टी है
2: हाँ।
3: या कपास वाली मिट्टी
2: जी,
3: ओके बैठले में कई साल लग जाला, तो वही को जब बैठला
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: तो वो फर्श धंस जाला।
2: कोशिश करे बैठे फर्श
3: बलुई मिट्टी के इस्तेमाल कर जाये, और ओके प्रॉपर जो है ओके अच्छे ढंग से
2: हाँ।
3: बैठावे चाहिए, मिट्टी के पानी डाल डाल के
2: जी
3: मिट्टी के बैठा दे, तब ऊपर फर्श बना।
2: पहलवा कई बार ऐसा होके कि दीवाल चारों ओर खड़ा हो गई और एक बरसात खातिर लोग छोड़ देते हैं कि ताकि बरखा बुनी से बैठत रहे, लेकिन अब लोगन लगे समय के अभाव बा।
3: प्राकृतिक रूप से
2: हाँ।
3: जो बिना कुछ खर्चा के
2: जी जी
3: मट्टी बैठवले की व्यवस्था रहा है, वो ये रहा
2: जी जी
3: की उनमें एक बरसात खाई जाये धीरे धीरे मट्टी अपन बैठ जाये,
2: तो चलत भी रहे बहुत।
3: हाँ, चलत रहो। जो कृत्रिम रूप से बैठावल जाला जल्दी बारे
2: हाँ, हाँ, जी।
3: तो ओकरे लिए मशीन उशीन के इस्तेमाल कर जाला, पानी डाल के मशीन चलावल जाला, ओके
2: हाँ, हाँ,
3: हिला के जमीन
2: हाँ, हाँ,
3: बैठा देवल जाला
2: जी जी। अच्छा, आज के समय में जोन भवन निर्माण में लोग कई जगह खोजत बीनत कि भाई मोरंग अच्छा नहीं बा या ठीक बा, बालू मोरंग ईंट के चयन कैसे कर जाए तनी ये पर बताई क्रम से कि कैसन बालू होके, कैसन मोरंग होके, कैसन ईंट के मजबूती कैसे चेक कर जाए?
3: बालू जोन है
2: जी,
3: कोशिश कर जाये कि जोन नदी पहाड़ से आवत
2: यही, अच्छा
3: ओकरे नदी के बालू अच्छा मिली, उनमें मट्टी गंध कम रही
2: जी।
3: और छनुई बालू का इस्तेमाल करे,
2: छनुई बालू,
3: छनुई बालू न कि स्टोर कल भल जमीन पे कहीं रखल
2: वो हाँ, हाँ,
3: हाँ। बालू का इस्तेमाल नहीं करे, उनमें मट्टी रहा
2: हाँ। तो प्लास्टर में भी नहीं ठीक
3: हाँ, बाद में सब में जो ना
2: जी
3: कमी आई बिल्डिंग में। और दूसरा मोरंग का चयन जोन कल जला, मोरंग का चयन भी मोटे दाना की मोरंग को देख के चयन करे चाहिए, उनमें मट्टी कंस न हो चाहिए
2: जी।
3: और बड़े बड़े पत्थर न हो चाहिए, अगर बड़ा पत्थरों में आता तो के बीन छाट के किनारे कर दे चाहिए
2: जी।
3: और गिट्टी का इस्तेमाल जहाँ तक बा, जहाँ तक मजबूत पत्थर के गिट्टी का इस्तेमाल चाहिए, जैसे झांसी से आवाला गिट्टी, नौतनवा से भी आवाला गिट्टी, एक बार कवरही से आता आवाला गिट्टी, दाला से भी गिट्टी आवाला, लेकिन हमें सबसे अच्छा जो कैटेगरी
2: हाँ, हाँ, हाँ,
3: डाला के गिट्टी हाँ, माल जाला के ऊपर पत्थर मजबूत होला,
2: तो गिट्टी के मतलब साइज भी जैसे लिंटर खातिर कौन
3: गिट्टी, चपटी गिट्टी के इस्तेमाल नहीं करे चाहिए, चपटी गिट्टी में वो शक्ति नहीं होला
2: हाँ, हाँ।
3: और गिट्टी का साइज जो है बहुत छोटा साइज की गिट्टी नहीं इस्तेमाल करे चाहिए
2: जी।
3: पौना इंच का जो साइज होला
2: हाँ। साइज में मतलब पौना इंच
3: पौना इंच की गिट्टी का ही इस्तेमाल करें।
2: ये घर के नींव चाहे लिंटर खाते हैं दोनों खाते।
3: छोट गिट्टी होला कमजोर पत्थर से बना, कमजोर पत्थर पहले टूटाला उससे चूरा बन जाला, तो छोट गिट्टी वही से बनाला।
2: ओकर कम से कम
3: ईटा
2: जो घर में सबसे ज्यादा लगेला एकर चयन कैसे करें?
3: ईटा का चयन ऐसे करके आई, पहले ईटा के टेस्ट करके चाहिए की पानी में भिगो दे 24 घंटे, पहले तौल लें फिर पानी में भिगो के तौल लें। अगर 20% से अधिक पानी सोखा था तो ईटा बेकार बा, ईटा के इस्तेमाल नहीं करे चाहिए। दूसरा उसका
2: ईटा के पानी में भिगो दी पहले
3: और दूसरा कि सीधा हो चाहिए, ओकर साइज आकार सब जो मानक बा उसके पूरा करे चाहिए। इन आए कोनो 9 इंची कीटा बा कोनो 10 इंची कीटा होगा, ऐसे अगर जोड़ाई कल जाए तो में मसाला ज्यादा लगी, प्लास्टर के लिए में भी मसाला ज्यादा लगी, खर्चा उससे बढ़
2: गया। हाँ, जी जी। तो ये बताएं कि ईंटे का लिंटर
3: प्रथम श्रेणी के जो ईटा होला, ईटा में भी कई कैटेगरी बा, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी झामा
2: पकल ईटा भी लोग शब्द में इस्तेमाल,
3: पकल ईटा जो होला प्रथम श्रेणी की ईटा वही के इस्तेमाल करे चाहिए।
2: अच्छा, गांव में आज भी कई जगह ईटा के भी लिंटर लगा था लेकिन कई जगह गिट्टी के भी, इसमें अंतर का होला और कौन ज्यादा मजबूती प्रदान करेला घर में?
3: अंतर ही होला कि ईटा के जो छत बनाला ओकर जो जिंदगी कम होला, ओकर 60 साल मानल जाला, और जो पत्थर वाली गिट्टी के बनाला छत आरसीसी जी के कहना ओकर उम्र जो है
2: घर की उम्र
3: 80 साल से 100 साल तक मानल जाला
2: गिट्टी के।
3: दूसरा भाग ईटे के छत जो है थोड़ा ठंडा पैदा कर, गर्मी के दिन में कम गर्म होगा, और आरसीसी के छत
2: फायदेमंदी बा,
3: ये फायदा बा
2: जी, ईटा के छत ठंडा
3: कर, जो गिट्टी वाला बनाला गर्मी में ज्यादा तपाला
2: जी जी।
3: और दूसरा है ईटे के छत में नमी के चांस, पानी घुसले के चांस वो ज्यादा होला
2: जी जी,
3: जबकि गिट्टी के छत में वो चांस बहुत नगण होला।
2: अगर
3: वाइब्रेटर मशीन वगैरह के इस्तेमाल कर दल जाए
2: तो जो लिंटर लगावा समय लोग एयर निकाले,
3: एयर निकाले बदे हवा निकाले बदे अंदर का ओके इस्तेमाल करना ना, तो ओकर पानी घुसले की क्षमता मतलब बहुत कम हो जाला,
2: कम हो जाला, जैसे लिंटर मजबूत रहा। अच्छा, कई बार होला कि जैसे मान ली पहला मंजिल तो बन गई जल्दीबाजी में बजट रहल बन गई, दूसरका मंजिल आदमी जब शुरू कैलास तो कहेला कि भाई ध्याने ना आएल में बीम ज्यादा चाहत रहे, ऐसे कई जगह सुनाई देला। अगर क्योंकि 2-3 मंजिला बनाओ बा तो ओकर का बीम के संख्या नीचे पहले मंजिल पर ज्यादा रहे?
3: नहीं, 2 से 3 मंजिल तक निर्माण के लिए ईटे का भी निर्माण हो सकता है
2: बीम के, हम
3: अगर बहुत भूकंप के प्रभावित क्षेत्र नहीं बा तो वहाँ इस्तेमाल करने में कोनो दिक्कत नहीं बा।
2: जी जी।
3: प्रथम श्रेणी के ईटा का अगर इस्तेमाल होता तो 2 से 3 मंजिल तक निर्माण कल जा सकल है, नींव को चढ़ाई थोड़ा बढ़ावे पड़ी
2: जी। अच्छा, एक चीज है जो एक सवाल बा कि ग्रामीण युवा अपने जो आपके निर्माण काम धाम बा व्यवसाय बा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में कैसे अपन रोजगार के तलाश कर सकते?
3: उनमें 3-4 तरीका बा,
2: जैसे
3: पहला तो बा के जो कारीगर होते हैं जो ITI सर्टिफिकेट वाले, जैसे मिस्त्री होना, राजमिस्त्री, प्लम्बर है और
2: इन सब के
3: बढ़ई है,
2: बढ़ई जी,
3: पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये सब कैटेगरी का ट्रेनिंग होला, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होला, व्यवहारिक शिक्षण भी होला
2: जी, जी, जी।
3: या फिर कॉलेज में भी।
0: पंच भाई सुनत रहना भेंट वार्ता भवन निर्माण हेतु सुझाव, ये पे जानकारी देते रहना इंजीनियर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, जानकारी देते रहना वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी। यही जानकारी के साथ घड़ी के सुई कर दल भाई सारा कि पंच भाई आपसे लिहल जा विदा। पंचो जय हिंद।

ग्राम जगत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।

0: একজন ওকার সুন্দর
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। केंद्रीय गृह मंत्रालय आवर्जन आ विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कई देले हो। एमे आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के तहत पंजीकरण के समय सीमा आ अपील प्रक्रिया में कई गो महत्वपूर्ण बदलाव कैल गैल बा। एह संशोधन के अंतर्गत भारत अइले के बादे 180 दिन पूरा भइले से पहले कब्बो पंजीकरण करावल जा सकेला। ऐसे पहले 180 दिन का समय पूरा भइले के 14 दिन के भीतर पंजीकरण करावल जरूरी रहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर जिला में 424 करोड़ रुपया से बेसी के लागत वाली कई गो विकास परियोजनन का लोकार्पण आ शिलान्यास कैले। एह मौका पर वहां के कहने की प्रदेश सरकार सेवा सुरक्षा आ सुशासन के संकल्प के साथे हर नागरिक के अधिकारन के सुनिश्चित करे बदे लगातार कार्य कर रही हो। श्री योगी कहने कि यही सत्र में कुशीनगर का कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का संचालनों होखे जा रहल बा।
2: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
1: श्री योगी अजुए गोरखपुर में चिलुआ ताल के पर्यटन विकास से जुड़ल कई गो निर्माण कार्य का लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल हो रहल हम हैं। उत्तर प्रदेश आतंक रोधी दस्ता UPATS पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़ल रहले के आरोप में आजमगढ़ से एगो मनई के गिरफ्तार कैले हो। एगो रिपोर्ट।

0: पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का उत्तर पुस्तिकन में पावल गैल त्रुटियन के सत्यापन आ ओकरे फिर से मूल्यांकन बदे पोर्टल आज से शुरू हो गई बा। ये पोर्टल 6 जून ले खुलल रही। एगो रिपोर्ट।
2: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पछिला 12 बरिस में उल्लेखनीय बदलाव आयल हो। महिला सशक्तिकरण के दिशा में भइल कोशिशन के लेके प्रस्तुत बा एगो खास रिपोर्ट।
3: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग प्रदेश में आज व बिहने कहीं कहीं बरखा और गरज चमक के साथ ही बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के तहत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सेवा, सुरक्षा और सुशासन के संकल्प के साथ प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। श्री योगी ने कहा कि इसी सत्र में कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का संचालन भी होने जा रहा है।
4: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। श्री योगी आज ही गोरखपुर में चिलुआताल के पर्यटन विकास से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आतंक रोधी दस्ते यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है।

0: एक रिपोर्ट।
1: खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
3: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक पूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: Akashvani at 90.
1: पंचो जय जवान जय किसान, पंच भाई यही नारा के साथ अपन बैठकी शुरू भई। पंच भाई बीजन भाई इंतजार करन है कि आज कार्यक्रम में हमने के का जानकारी लेके आवल जाई हमेशा के तरह से। तो पंच भाई आज अपने कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा के विषय बाकी धान के नर्सरी डालते समय सावधानियां
2: का बरते चाहे।
1: बिल्कुल
2: भैया कुछ जानकारी दी पंच भाई लोग के।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज है कि धान एक प्रमुख फसल है। एक जोन बाटे जब भी नर्सरी डाले के रहे तो एक सबसे जोन बाटे उचित समय यह 25 मई से 10 जून के बीच होला। एक बीच में जोन बा धान के नर्सरी के जोन बाटे जब डालल जा तो ये पे विशेष ध्यान दिया जाए कि बीज उपचार जो सबसे बड़ी चीज़ होला कि बोले से पहले बीज के जोन बाटे ठीक से जोन बा उपचार को लिया जा ओके जोन बा ध्यान रखल जा कि जोन बा उचित किस्म के बीज होके कि जैसे अधिक से अधिक जोन बाटे पैदावार होके कि आने वाले समय में जोन बाटे अगर धान काटत ना तो अगर पैदावार अधिक से अधिक पंच भाई के मिले। साथे साथे जोन बाटे जुताई भी अच्छे से तरह से कर लेक चाहिए 2-3 बार ठीक से कि जमीन के माटी जोन बा भुरभुरा हो जा कि जब उनमें धान के फसल के उत्पादन होके तो कीट जोन बाने जोन खर पतवार बाने वो सब जोन बा हट जा आ जोन बा धान के फसल ठीक से पैदा होके और जोन बाटे कि जैसे पंच भाई के लाभ मिल सके। ये सब चीज़ के विशेष ख्याल रखे के चाहिए। पंच भाई बात कही जारी रही आई कल जा एगो मन मसाई सुनल जा लोकगीत फिर कार्यक्रम आगे बढ़ी।

0: हाँ पंच भाई सुनत रहना, हरि प्रसाद यादव और साथी के आवाज में इतना अच्छा जोन बाटे लोकगीत।
1: पूरा हमर मनसाइन भइल, दिया जाओ
0: बिल्कुल
1: इनके धन्यवाद।
0: बिल्कुल
1: अब भैया देखा, हमन के जब खेती बाड़ी की बात कही जाला तो गन्ना भी एगो ऐसा फसल बा जौने के लगेले से बहुत लोग आर्थिक रूप से समृद्ध बनल बा
0: बिल्कुल
1: भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो यही से जुड़ल एगो हमन के बातचीत आज सुनवल जाए कि गन्ना की फसल की पैदावार कैसे बढ़ाएं, ये
0: जी
1: भी सब जानकारी देवे खातिर जगदीश प्रसाद यादव आइल बणा और मोहम्मद असलम खान, इन दोनों लोगन से बातचीत जोन बा हमन के सुनल जाओ, फिर बैठ के
0: जी
1: आगे बढ़े।
0: ठीक।
2: मैं मोहम्मद अशरफ आलम खान, अध्यक्ष किसान मंच। हमारे साथ जनपद गोरखपुर के जिला गन्ना अधिकारी श्री जगदीश चंद्र यादव जी आज काफी विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि राज्य सरकार की जिला स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं हैं, गन्ना किसानों को किस तरह से जोड़ा जाए गन्ने की खेती से, गन्ने की प्रजातियां क्या हैं, गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएं। तो मैं आकाशवाणी गोरखपुर के स्टूडियो में जिला गन्ना अधिकारी जी का स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न ये है कि एक बड़ी क्षमता की चीनी मिल गोरखपुर में आज से 5-6 वर्ष पहले स्थापित की गई, इससे किसानों में बड़ा उत्साह बढ़ा, परंतु जो उसकी पेराई क्षमता है उसके सापेक्ष में गन्ना इस जिले में बहुत कम है। यदि गन्ने की खेती को बढ़ा दिया जाए तो इस मिल की उत्पादकता बढ़ेगी, चीनी का उत्पादन बढ़ेगा और जो नकदी फसल है किसानों का, जिसका एक गौरवशाली अतीत रहा है, किसानों में काफ़ी सामाजिक आर्थिक बदलाव आया गन्ने की खेती के माध्यम से, तो उस अतीत को पुनः उसकी पुनरावृत्ति की जाए जिससे किसान समृद्धि की तरफ अग्रसर हो।
3: धन्यवाद। जनपद गोरखपुर में लगभग 2464 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती होती है और मुख्य रूप से पिपराइच क्षेत्र, सरदारनगर क्षेत्र, कुछ हद तक धुरियापार और कैंपियरगंज में भी गन्ने की खेती की जाती है। किसानों की मांग पर ही 2019 में कॉरपोरेशन विभाग से एक सरकारी चीनी मिल यहाँ स्थापित की गई, तब से लगातार ये गन्ने की पेराई कर रही है। यद्यपि इस चीनी मिल की जो पेराई क्षमता है 24 घंटे की 50,000 कुंटल 24 घंटे में पेराई करती है, परंतु एक खेत का विषय है कि इस चीनी मिल को इस जनपद से रॉ मटेरियल के रूप में गन्ने की उपलब्धता बहुत कम है। जबकि प्रयास ये रहता है कि चीनी मिल में गेट का एरिया अच्छा हो, परंतु ये खेदजनक है कि यहाँ ऐसा हो नहीं पाया अभी तक। और गन्ने का क्षेत्रफल कैसे बढ़ाया जाए, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं इसमें, जिसमें मुख्य रूप से किसानों की मांग रहती थी कि हमारा गन्ना मूल्य भुगतान अगर समय से हो, जाहिर सी बात है गन्ने की फसल एक नकदी फसल है, इसलिए गन्ना मूल्य भुगतान पर विशेष जोर रहता है। पिछले पेराई सत्र में प्रत्येक सप्ताह किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाता रहा है और पूरे इस मंडल में अभी तक रिकॉर्ड है कि सबसे अच्छा गन्ना मूल्य भुगतान पिपराई चीनी मिल का रहा है और आगामी आने वाले वर्षों में भी ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि किसानों की बड़ी मांग थी हमारा समय से गन्ना मूल्य भुगतान हो जिससे हम अपनी अन्य जरूरतों को पूरा कर सकें। गन्ना किसान भाई जिनकी आय गन्ने से ही है तो उनकी हितों का जरूर ध्यान रखते हैं। गोरखपुर कभी गन्ने की खेती के लिए गढ़ माना जाता था, पुनः प्रयास चल रहा है कि इस क्षेत्र को पुनः वैसे ही एक स्थापित कर दिया जाए जिससे कि यहाँ पुनः गन्ने की खेती किसान भाई बढ़ाएं और अपना उत्पादन बढ़ा करके अपनी आमदनी बढ़ाएं।
4: अभी आपने बताया कि उनको इनकरेज करने के लिए, उनके मन में आशंका ना हो किसानों के, एक हफ्ता के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान पिपराई चीनी मिल कर देती है, इसका किसानों ने तो स्वागत किया है, लेकिन जो उत्पादन लागत है गन्ना की खेती में प्रति कुंटल, इस पर जो है किसान कभी कभी चिंतित हो जाते हैं। तो क्या गन्ने की उत्पादकता की जो लागत है उसके सापेक्ष में अगर कुछ कम मिल रहा है तो कुछ बढ़ोतरी पर भी विचार राज्य सरकार कर रही है?
3: बिल्कुल, आपने बहुत सामयिक बात उठाई है। किसानों की ये मांग कि गन्ने का रेट या मूल्य में विचार किया जाए अन्य फसलों की जैसे, किसानों की यह बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई गई है। आगामी पेराई सत्र में निश्चय है कि इस पर हमें सकारात्मक प्रभाव दिखेगा और गन्ना मूल्य का निर्धारण भी चीनी मिल चलने से पहले ही होगा, पहली बार ही ऐसा प्रयास किया जा रहा है।
4: यहाँ पर जो मिट्टी के परीक्षण की व्यवस्था है, जैसे किसान भाई ये कहते हैं कि सॉयल टेस्ट करा लें, सॉयल हेल्थ कार्ड अपना ले लें, मृदा परीक्षण के लिए कहाँ संपर्क करें
3: जी,
4: इसमें विभाग का क्या रोल है सर?
3: मृदा परीक्षण के लिए हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं, जिन किसानों का अभी तक मृदा परीक्षण उनके खेत का नहीं हुआ है उनका सैंपल कलेक्ट करके हम प्रयास कर रहे हैं कृषि विभाग की जो लैब है, प्रयोगशाला है सॉयल टेस्टिंग लैब, उसमें परीक्षण कराएंगे।
4: सीड मैनेजमेंट कैसे होता है, किसान इसके लिए कहाँ संपर्क करें?
3: रही बात गन्ना की वैरायटी के बीज की, तो जो भी गन्ने के बीज चाहिए इसमें पूरे प्रदेश में जो भी उनके समझ में आता है कि हाँ ये पॉपुलर वेरायटी ही अच्छा पैदावार देगी, वो सारी वेरायटियों का हमारे जिले में कुछ न कुछ क्षेत्रफल है, बीज उनको हम बिल्कुल देंगे और हमारे गन्ना सुपरवाइजर जो होते हैं वहाँ जाएं, उनसे संपर्क करें या केन यूनियन पर संपर्क करें या CDI के यहाँ संपर्क करें, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के यहाँ या जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में भी आ सकते हैं और अपनी बात, अपने बीज की मांग रख सकते हैं। और जलभराव क्षेत्र के लिए खास करके जो अगेती किस्म है गन्ने की 98014-94184 मुख्य रूप से उपयोगी है और सामान्य प्रजाति के रूप में 10239 और अगेती में 5125 भी है। तो ये 4-5 वेराइटियाँ हैं जो अब किसान भाई यहाँ जलभराव क्षेत्र में इसकी पैदावार कर सकते हैं।
4: सरैया चीनी मिल सरदार नगर में बड़ी क्षमता की चीनी मिल थी एक जमाने में। यहाँ खोराबार से लेकर के मेडिकल कॉलेज के पीछे और रतनपुर गांव जो पिपराइच का है, तो ये सब क्षेत्र गन्ने से पूरी तरह से आच्छादित थे। लेकिन वो धीरे धीरे गन्ने से जो कटते गए किसान, क्या अभी सोसाइटी के मेंबर वो होंगे या नई मेंबरशिप उनको लेनी पड़ेगी अगर गन्ने की खेती से आपके विभाग के प्रयास से वो जुड़ रहे हैं?
3: जी
4: क्या
3: जी,
4: करना होगा
3: जी, मैं इसमें अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी केन यूनियन के एक बार मेंबर बनने के बाद कोई भी आजीवन सदस्य रहता है, यदि उसकी मृत्यु भी होती है तो उसके उत्तराधिकारी उसके मेंबर मान लिए जाते हैं। तो एक बार मेंबर बन चुके हैं तो दोबारा उनको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई नया किसान अगर खेती करना चाहता है तो उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। वो ऑनलाइन व्यवस्था है, सोसाइटी पे चले आवे, केन यूनियन पे चला आवे, अपना डिटेल मतलब खतौनी दे देगा, फोटो दे देंगे और पासबुक दे देंगे, प्लस उसमें गन्ना क्षेत्र कितना बोए हैं तो उनको मेंबर बना दिया जाएगा। उसमें 221 रुपए की रसीद फीस लगती है। मेरा पुनः अनुरोध है, जिसे सरदारनगर मिल की बात उठाई आपने, तो उस मिल क्षेत्र में लगभग हमारे 15,000 किसान हैं जो उस समिति के मेंबर हैं, परंतु आज की डेट में उसमें से केवल 1,250 किसान ही हैं गन्ने की खेती करते हैं। मेरा यह अनुरोध जरूर रहेगा किसान भाइयों से कि जो जो स्कीम हमारे विभाग से चल रही है या चीनी मिल की मदद से चल रही है, केवल गन्ना क्षेत्र बढ़ाने के लिए ही चल रही है। पैदावार कैसे बढ़ाएं?
4: किसान यादव साहब ये चर्चा करते हैं कि मजदूर और लेबर क्लास के लोग गन्ने की कटाई छिलाई के लिए नहीं मिलते हैं या मान लीजिए गुड़ाई के लिए नहीं मिलते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये बड़ा झंझटी कार्य है। तो इसके विकल्प के रूप में क्या कुछ गन्ना कृषि वैज्ञानिकों ने या जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कुछ उपकरण वगैरह तैयार किया है?
3: विभिन्न गोष्ठियों में जो समझ में आया कि श्रमिक समस्या काफी बड़ी समस्या इस जिले में है, तो इसके विकल्प के रूप में खासकर गन्ना कटाई और छिलाई को लेकर के एक हम लोगों ने कई हार्वेस्टर जो छोटी जोत में भी चल सकता है, बड़ी जोत में भी चल सकता है।
4: तो ये कैसे अनुदान के द्वारा दे रहे हैं अथवा डायरेक्ट पेमेंट के द्वारा?
3: ये भी विकसित है, ये मतलब बना हुआ है एक इंजीनियर के यहाँ है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है किसान भाई की 4 फीट दूरी पर गन्ना बोएं। अगर 4 फीट दूरी पर गन्ना नहीं बोएंगे तो उसका पहिया चल नहीं पाएगा और अगर चलेगा भी तो पेड़ी आगामी फसल अर्थात जो पेड़ी है वो नुकसान हो जाएगी। पेड़ी ही असली किसान का लाभ होता है, इसलिए उस मशीन को चलने के लिए कम से कम 4 फीट दूरी पर गन्ना बोएं, जिससे कि मशीन उसका चल सके। और हार्वेस्टर ये निश्चित है किसान भाई अगर क्षेत्र बढ़ाएंगे 4 फीट दूरी पर तो आगामी 2-3 वर्षों में हम ये केन हार्वेस्टर जरूर आ जाएगा इस जिले में, ये हम आपको आश्वस्त करना चाह रहे हैं।
4: अच्छा, ऐसा कुछ गन्ना विभाग अभियान के रूप में ले रहा है कि जिन क्षेत्रों में गन्ना किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ दी है उनके बीच में कुछ प्रचार प्रसार गोष्ठी सेमिनार, तो ऐसे कुछ प्रयास आपके विभाग की तरफ से हो रहे हैं?
3: मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी तक हमारी गन्ना केन यूनियन चाहे पिपराइच हो चाहे सरदारनगर हो, जब से समिति स्थापित हुई है तब से लेकर के जिन्होंने गन्ना बोना छोड़ दिया है उनकी पूरी सूची निकाल करके उनके जिनका भी नंबर हमारे पास था एक अभियान के रूप में उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। अभी तक हम लगभग 2687 किसानों से संपर्क 3 दिन के अंदर कर लिए हैं, जिसमें से लगभग 127 किसानों ने वादा किया है कि हम आगामी शरद काल में गन्ना बोएंगे, परंतु विभिन्न कारणों से गन्ना कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं गन्ना हम विभिन्न कारणों से नहीं बोएंगे। उसमें कई कारण हैं, जैसे कि उनके घर में कोई खेती करने के लिए उपलब्ध ना होना या श्रमिक की समस्या, कुछ किसान बोले कि नहीं रेट की समस्या, गन्ने की खेती में समस्या जो हम लोगों ने महसूस किया है कि यहाँ के किसान जो बताते हैं बुआई से लेकर कटाई तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि श्रमिक की समस्या को हर हाल में दूर किया जाए, चाहे वो खेत की तैयारी हो, चाहे गन्ने की बुआई हो, चाहे गुड़ाई हो, चाहे कटाई हो। हम बुआई के लिए अभी इसी साल इसी सीजन में ऑटोमेटिक केन प्लांटर लाए हैं और करीब 25 किसानों ने उसका इस्तेमाल भी किया है। उसमें केवल 2 लेबर की जरूरत पड़ती है, बाकी उसमें फर्टिलाइजर बॉक्स और दवाई का बॉक्स जो सीड ट्रीटमेंट के लिए लगाते हैं वो सारा उसमें रहता है। 50 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर से किसान आए स्वयं लेके जाए और अपना गन्ने की उसमें बुआई करके लौटा जाए, वो निःशुल्क उपलब्ध है।
4: इसमें जो है कहां उनको संपर्क करना होगा?
3: कोई भी समस्या हो किसान की, हमारे केन यूनियन पर आ जाएं, जो भी उनको चाहिए वो सारी चीज
4: में मिलना पड़ेगा या गन्ना सोसाइटी में?
3: गन्ना सोसाइटी में केन यूनियन पे आ जाएं, वहीं हमारे काउंसिल का भी कार्यालय है, दोनों यूनियन और परिषद का दोनों कार्यालय एक ही जगह इसीलिए रखा गया है ताकि किसान को दौड़ना ना पड़े। और उसके अलावा भी हम अवगत कराना चाहेंगे कि बहुत सारी जैसे दवाएं खेती में लगती हैं बीज उपचार भूमि उपचार के लिए, वो भी हम 50% छूट पर चीनी मिल की सहायता से उपलब्ध करा रहे हैं।
4: अच्छा, गन्ना फसल सुरक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उसमें ये देखा गया है कि जो ड्रेने हैं गोरखपुर जिले में, बड़े बड़े प्राकृतिक नाले हैं, वो भट गए हैं सिल्ट से, तो उनकी सफाई न होने से वो वाटर लॉगिंग हो जाता है, उससे गन्ने की फसल चौपट हो जाती है, तो इससे भी किसान चिंतित हो जाता है और गन्ना इसलिए नहीं बोता है। तो क्या उस सिल्टिंग की सफाई के लिए सिंचाई विभाग को आपका विभाग कुछ कार्रवाई हेतु लिख रहा है?
3: जी, हम इन नालों को चिन्हित किए हैं। अभी एक महीना पहले मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक बाढ़ खंड इंजीनियर के साथ हुई थी, हम नालों की सूची उनको दे दिए हैं, ये नाले हैं इनको चिन्हित करके कि इनसे हमारे किसानों की गन्ने की फसल प्रभावित होती है, कृपया इन नालों को सफाई करें जिससे कि उनकी पैदावार न खराब हो, क्योंकि वही उनकी आय का मुख्य स्रोत होता है। फसल सुरक्षा में मुख्य रूप से किसानों की यहाँ मांग थी कि आवारा पशु और जंगली जानवरों से भी हमारी फसल पर काफी आक्रमण होता है, नुकसान करते हैं। किसानों की इसी मांग को रखते हुए लगभग हम इस बार 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में झटका मशीन 50% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराया है। किसानों से अपेक्षा की है कि अपने गन्ने के खेत के चारों तरफ झटका मशीन लगाएं और जिससे कि जंगली जानवर या आवारा पशु से उनके खेत के नुकसान को बचाया जा सके। आने वाले वर्षों में भी हम किसान के साथ खड़े रहेंगे और अगर उनको इस तरह नुकसान कहीं होता है तो जरूर उनकी मदद करेंगे। गन्ने में मुख्य रूप से रेड राट बीमारी लगती है और कीट के रूप में मुख्य रूप से टॉप बोरर लगता है। इन दोनों का अगर नियंत्रण रहेगा तो किसान का निश्चित ही उनकी फसल का नुकसान नहीं होगा। टाबोरर कीट के नियंत्रण के लिए कोराजन एक दवा आती है जो 150 ml प्रति हेक्टेयर में इस्तेमाल होती है, वो 10% छूट पर हमारी सोसाइटी में उपलब्ध है। जो भी किसान भाई आएंगे उसको ले जाएं और जड़ के पास इस्तेमाल करेंगे जिससे कि पूरे पौधे में सोख करके फैल जाता है और 3 महीने तक कोई भी कीट गन्ने में नहीं लगेगा, चाहे टाबोरर हो चाहे कोई भी कीट हो।
4: एक अंतिम प्रश्न ये है कि इस समय समसामयिक कर्षण क्रियाएं क्या हैं, गन्ने के खेत में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
3: जी, गन्ने की खेती मुख्य रूप से पेड़ी और पौधा दोनों रूप में होती है, जहाँ 50% लगभग पेड़ी होती है उतना ही पौधा क्षेत्रफल होता है। तो मेरा ये कहना है किसान भाई पौधे को बहुत ध्यान देते हैं लेकिन पेड़ी गन्ने को वो लगभग छोड़ देते हैं आवारा रूप में, जबकि पेड़ी की क्षमता पौधे की क्षमता से ज्यादा होती है उत्पादन में, परंतु पेड़ी की देखभाल किसान भाई नहीं कर रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर हम लोगों ने एक स्कीम बनाई है, लगभग 851 किसान ऐसे तैयार हुए हैं जिनके खेत पर हम NPK 19-19-19 और सागरिका मिक्स करके ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करवा रहे हैं और 50% अनुदान पर उपलब्ध है। और जो किसान भाई और भी चाहते हैं कि उनके यहाँ स्प्रे हो तो कृपया केन यूनियन पे आए और स्प्रे कराएं, लेकिन पेड़ी की खेती पर उसमें न खरपतवार ना हो, समय सिंचाई करें और समय से फर्टिलाइजर डालें उसमें, जिससे कि उसकी उत्पादन हमेशा पौधे से अच्छी होती है और आगे पा सकें किसान भाई।
4: गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे किसानों को जोड़ा जाए?
3: विभाग की तरफ से 3 योजनाएं चल रही हैं, एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिला योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसके अतिरिक्त मैं जो किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, चीनी मिल के आर्थिक सहयोग से कुछ स्कीम हम संचालित कर रहे हैं। जैसे किसानों की बहुत बड़ी मांग थी कि उधार गन्ना बीज हमें उपलब्ध कराया जाए, और पिछले साल से हम लगातार जिन किसान भाइयों को गन्ने का बीज चाहिए अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उधार गन्ना बीज हम उपलब्ध करवा रहे हैं उनको, उस समय कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो आगामी सदस्य वो पैसा जितना लागत आती है वो हम उनके सप्लाई से काट लेते हैं। इसके अलावा जिन किसान भाई को जो बीज चाहिए अगर वो बीज का पैसा देने में सक्षम है परंतु यातायात लागत देने में अक्षम है तो हम उनके खेत तक गन्ने का बीज उपलब्ध करा देंगे, उनको यातायात लागत भी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा हम बीज उपचार के लिए जो सबसे अच्छी दवा है थायफिनेट मिथाइल की, वो हम 50% अनुदान पर उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में इंसेक्टिसाइड भी, एक कीटनाशी भी हम 50% अनुदान पर उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में रेड राट काफी लगता है। ट्राइकोडर्मा जो एक फंगस है और दूसरी फंगस को मारती है, तो इसको भी हम 50% अनुदान पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 ट्रेंच मशीनें नई आधुनिक रखी हैं, जिससे क्योंकि बुआई ट्रेंच बीज से करने पर किसानों की उपज अच्छी मिलती है, इसलिए हमने 3 ट्रेंच एक्स्ट्रा मंगवा के रखे हैं और रिंग पिट डिगर भी रखे हैं। जिन किसान भाइयों को चाहिए बुआई करके ला के निःशुल्क ले जाके बुआई करके लौटा जाए।
1: हाँ भैया, बातचीत सुनल गई। गन्ना की फसल की पैदावार कैसे बढ़ाएं, जानकारी देते रहे जगदीश प्रसाद चंद्र यादव, इनसे बातचीत करते रहे मोहम्मद अशरफ आलम खान। अब यही गाते एक गीत सुनल जाओ, फिर हम बैठ के आगे बढ़े।

0: हाँ भैया, पुरान मन मनसाइन भइल और एक साथ अब घड़ीक सुई चलने के इशारा करता तो पंच भाई हमन के कार्यक्रम से विदा लिहल जाओ, चलल जाओ। पंचो
1: पंचो जय
0: जय जवान
1: जवान
0: जय
1: जय
0: किसान।
1: किसान।

कृषक भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे खेती बारी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कुछ सूचनाएं सुनिए।

अजय कुमार, ग्राम हनुमानगढ़िया, टोला सोहलनी, थाना सुनौली, महाराजगंज से अपनी पत्नी अनीता के खोने की सूचना हमें देते हैं। अनीता 5 फीट की हैं और उम्र इनकी लगभग 44 वर्ष है। काले रंग का ये साड़ी पहने हुए हैं और आँख, नाक, कान औसत दर्जे का है, रंग गोरा है। अनीता के बारे में कोई सूचना अगर आपके पास हो तो इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें, 8601395264। एक बार फिर सुन लें, 8601395264।

कमलेश मौर्य, हरैया पंडित थाना कोल्हुई महाराजगंज से हमें अपनी पुत्री खुशबू के खोने की सूचना दिया है। खुशबू की उम्र है 13 वर्ष, कद 4 फुट 5 इंच है, रंग गोरा है। ये नीले रंग का छींटदार कुर्ती और काले रंग का प्लाजो पहने हुए हैं। खुशबू के बारे में कोई सूचना अगर आपके पास हो तो कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित कर दें। फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9454400296। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 9454400296। सुग्रीव साहनी अपनी पत्नी मनीषा साहनी के खोने की सूचना हमें देते हैं। ग्राम ठूठी बारी मरचहवा थाना ठूठी बारी जनपद महाराजगंज से। मनीषा साहनी का कद जो है वो 5 फीट है, उम्र करीब 27 वर्ष है। ये साड़ी पहने हुए हैं और दुबली पतली हैं। इनके बारे में अगर कोई सूचना आपके पास है तो इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें, 9975458480। एक बार फिर फ़ोन नंबर सुन लें, 9975458480। फिरोज ग्राम भगाटार पोस्ट मिठौरा थाना सिंदूरिया जनपद महराजगंज से अपनी पुत्री रुखसार के खोने की सूचना हमें देते हैं। रुखसार की उम्र है 21 वर्ष, रंग गोरा है। ये सलवार सूट पहने हुए हैं और ऊपर से नकाब लगाए हुए हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट है। रुखसार के बारे में कोई सूचना अगर आपके पास है तो इस मोबाइल नंबर पर सूचित कर दें, 9454404651। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 9454404651।

0: राणा प्रताप ज ज उर्फ तेंदु अहिया थाना पनियरा ज़िला महराजगंज से अपनी पुत्री रोशनी के खोने की सूचना हमें देते हैं। रोशनी की उम्र है 18 वर्ष, रंग सांवला है, चेहरा लंबा है, नाक कान कद औसत दर्जे का है और इनकी लंबाई लगभग 5 फीट 2 इंच है। ये हरे रंग का सलवार समीज पहने हुए हैं। रोशनी के बारे में अगर कोई सूचना आपके पास है तो कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें 8438117840। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लें 8438117840। दिलीप, पता है इनका बरगदवा, पोस्ट सुमेरगढ़, थाना श्याम देवरुआ महराजगंज से अपनी पुत्री सलोनी के खोने की सूचना हमें देते हैं। सलोनी की उम्र है 14 वर्ष, लंबाई 5 फीट है, रंग इनका गोरा है, चेहरा गोल है और ये पीले रंग का फ्रॉक और लेगिंग्स पहनी है लाल कलर का। इनके बारे में अगर कोई सूचना आपके पास है तो इस मोबाइल नंबर पर सूचित कर दें 9454403909। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लें 9454403909। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं अब समाप्त होती हैं। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details log on to www.ddindia.com।

लोकधारा कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं अनीता राय, क्षमा कीजिएगा अनीता सिंह। इनके स्वर में लीजिए, सुनिए सबसे पहले ये गीत।

पारंपरिक लोकगीत अभी आप सुन रहे थे अनीता सिंह की आवाज में। लोकधारा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये गीत।

लोकधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनीता सिंह के गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। देश हमार कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैयालाल रौनियार से भोजपुरी कहानी दुई गो रोटी।

आजकल लगभग अधिके घर परिवार में बुजुर्गन के बहुते सासत हो रहल बा। ऐसने देखे के मिलत बा कि बढ़ती उम्र के हो गईला के बाद वह लोग के देखभाल सही ढंग से नइखे हो पावत। जब तक महतारी बाप के शरीर में जांगर बा, तब तक परिवार के लोग उनके खटावत बाने, आ जब देह कमजोर हो जात बा तो उनके हाल पर छोड़ दिहल जात बा। अगर बाप महतारी कौनो शिकायत चाहे अपने घर परिवार के विषय में कुछ जानल चाहत बाने तो उनके डांट के कहल जात बा कि तू लोग से ये सबसे का मतलब बा, तू लोग के तो अब दुई गो रोटी से मतलब रखे के चाही। बुजुर्गी में महतारी बाप के महत्व सिर्फ दुई गो रोटी तक ही सीमित हो गईल। ऐसन सोच रखल दुर्भाग्यपूर्ण बा और सबके यह विषय पर विचार करे पड़ी। आज रामप्रसाद के घर बहुते चहल पहल रहल, कारण कि आज रामप्रसाद के जन्मदिन मनावे के आयोजन रहल, उ 101 बरिस के हो गई रहने। ई कहानी रामप्रसाद के ह जौन अपने परिवार सहित रघुनाथपुर नाम के नगर में रहत रहने। रामप्रसाद के भरल पूरल परिवार रहे। उनके परिवार में उनकर बेटा कमलेश उम्र 44 वर्ष, पतोहि शांति उम्र 40 वर्ष, पोता अजय उम्र 15 वर्ष और पोती दीपा जिनकर उम्र 12 वर्ष के रहल। गुजर बसर बदे एगो किराना के दुकान और 4 बीघा खेत भी रहल। अच्छा से जिंदगी बसर होत रहल। यह तरह समय के पहिया आगे बढ़त रहल। कमलेश के विवाह योग भइला पर रामप्रसाद अपने बेटा के बियाह आशा के साथे कई दिहने और आशा बहु बन के घर में आ गईली। 4 दिन के चमक चांदनी ऐसन दिन बीतल। पतोहा के नाम तो आशा रहल, लेकिन काम सगरो निराशा वाला रहल। उ केहुए से खाली मतलबे भर के बोले, अपने आप में मगन रहें। आ इहे संस्कार उ अपने बेटा अजय और बेटी दीपा के

दादा से बाते बात में कहलें कि देखत बाड़ू समय कितना तेजी से भागल जा रहल बा। आ बाबूजी के उम्र भी अब 60 बरिस के हो गई। बाबूजी से न तू ही बोलेलू और न हम ही उतना ध्यान देवेनी। न तो उनकर पोता पोती भी बाबूजी के लगे कबो नहीं बैठे न। हाँ, समय समय पर रुपया पैसा जरूर मांग लेवेल। कमलेश और आशा आपस में राय करत रहल लोग कि मनई के जिंदगी के कौन ठीक बा। ना ही असली तो नकलिए व्यवहार स्नेह प्रेम अपनत के दिखावा करके ही ई घर मकान और 3 बीघा खेत बा ओके अपने नाम से बैनामा रजिस्ट्री बाबू जी से करा लिहल जा। सब कुछ धन मकान संपत्ति कानूनी रूप से जब आपन हो जाई तो ओकरे बाद केकरा के पूछेला। ई बात सुन के आशा अपने पति कमलेश से कहली, रउआ ठीक कहत बानी। अब बेटा पतोही लोग यही योजना के अनुसार अपने बाबूजी के साथे अत्यधिक स्नेह प्रेम और अपनत्व के व्यवहार करे लागल लोग। करीब 1 साल बीतल राम प्रसाद अपने बेटा पतोही के व्यवहार से पिघिल गए हैं और अपन जौन भी नगदी पैसा दुकान मकान और खेत जौन भी रहे कानूनी रूप से रजिस्ट्री बैनामा कमलेश के नामे कह दिए हैं। अब तक घर में हंसी खुशी के माहौल रहे लागल। यह तरह 1 साल बीत गए। राम प्रसाद के उम्र अब 70 साल के हो गए और अब परिवार के सब केहू अपन असली रूप दिखावे लगल। कौनो भी बात राम प्रसाद पूछें तो बेटा पतो उनके डांट के कहें कि बाबूजी तोहके ये सबसे का मतलब बा, तोहके तो अब 2 गो रोटी से मतलब रखे चाहिं जौन कि तोहके मिलते बा। कुछ महीना यह तरह से बीतल। अब राम प्रसाद बीमार रहे लगने। कमलेश समाज के दिखावे बदे बाबूजी के दवा पानी करावें। कमलेश अब अपने बाबूजी के बीमार रहले से परेशान हो गए रहने। 6 महीना में एक डॉक्टर से पूछ के दवाई ले आ दें, फिर 6 महीना पटा जाएं। अब तो राम प्रसाद के शरीर हिले कांपे लगल। राम प्रसाद घर परिवार चलावे बदे अपने जिंदगी में बहुते मेहनत कैले रहले ताकि केहू के कोनो कमी न रह जाए। उ सबके संभरले लेकिन उनकर जब कठिन समय आयल तो उनकर साथ केहू नहीं दिहलस। एक समय के बात है कि राम प्रसाद के पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ली। वह समय राम प्रसाद के हाथ खाली रहल आ कमलेश से तो कोनो मतलब ही नहीं रहे। जबकि बाबूजी के दुकान वह संभारे थक हार के राम प्रसाद अपने खेत में से 1 बीघा खेत बेच के अपने पत्नी के दवा करौले। लेकिन उ बच नहीं पौली, उनका मृत्यु हो गई। पत्नी के मर गईला के बाद राम प्रसाद और टूट गए। साल भर बीतल। राम प्रसाद अपन सब कुछ बेटा कमलेश के नामे कह दिया। समय अपने चाल से चलल जात रहल। राम प्रसाद बेर बेर बीमार पड़े। कमलेश अपने बाबूजी के अनिच्छा से खाना पूरी करके खातिर और समाज के दिखावे बदे दवा पानी करावें। एक समय के बात है कि कमलेश के ई पता लागल कि नगर में एगो सिद्ध महात्मा आयल बाने। कमलेश महात्मा जी से मिल के अपने बाबूजी के स्वास्थ्य के बारे में बतौले। महात्मा जी कहलें कि बेटा दवाई तो आपन काम करबे करेला, ओकरे साथे साथे बूढ़ पुरनियन के प्रति पूरा परिवार के व्यवहार स्नेह प्रेम और अपनत्व वाला होके चाहिए। जबकि अच्छा बात व्यवहार और अपनत्व दिहला में 1 भी रुपया के खर्चा नहीं बा। लेकिन आश्चर्य के बात बाकी मनई सगरो लेना देना कर लेला लेकिन बिना पैसा वाला स्नेह प्रेम के 2 गो बोली नहीं बोल पावेला। महात्मा जी कमलेश से कहलें, तू और तुहार पूरा परिवार पोता पोती सहित अपने बाबूजी के विशेष ध्यान रखो। उनसे प्रेम से बोलो बतियावो और उनके पास कुछ समय नियमित रूप से बैठो। और हाँ, जौना कमरा में तुहार बाबूजी सूते बैठन है वही कमरा में एक और चौकी बिछौना लगा के एक सज्ञान आदमी के उनके पास रात्रि में सूते के भी पड़ी। बुजुर्गन के विश्राम कक्ष ऐसने जगह होके चाही कि जहाँ से घर बाहर भीतर अइला गइला पर उनके ऊपर नजर पड़ सके। बुजुर्गी में अधिकांश समस्या के

0: जड़ अकेलापन होला और यही अकेलापन के समय में बुजुर्ग कुछ न कुछ सोचल करेलें और यह सोचल उनके बीमारी के प्रमुख कारण बनेला। अब तक कमलेश महात्मा जी के कहला अनुसार अपने बाबूजी के साथे व्यवहार करे लग रहे हैं। करीब 6 महीना में ऐसा चमत्कार भइल कि राम प्रसाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। आज राम प्रसाद जी पूरे 101 वर्ष के हो गए हैं। यही उपलक्ष्य में जन्मदिन के समारोह के आयोजन भइल है। जौना में पत्रकार भी आयल रहने। पत्रकार राम प्रसाद जी से पूछले कि दादाजी आप बताइए कि आपके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, जबकि आप विगत वर्षों में गंभीर रूप से बीमार पड़े थे और बचने की उम्मीद भी नहीं थी। तब राम प्रसाद जी कहे लगने कि स्नेह प्रेम और अपनत्व के अभाव आदमी और खास तौर पर बुजुर्गन के लिए जहर के समान बा और सब बीमारी के जड़ बा। हर आदमी के चाही कि उ सबके ऊपर विशेष रूप से बुजुर्गन के नियमित देखभाल करें, उनके अपनत्व स्नेह प्रेम प्रदान करें। बुजुर्गन के पास केहू बैठे ला नाही, बोले बतियावे ला नाही, तो बुरी तरह से टूट जाने। अरे बुजुर्ग कचरा के डिब्बा नाई हमें, बुजुर्ग हर परिवार के खातिर अनुभव के थाती बाने, उ भाग्यशाली बा जेकरा ऊपर बुजुर्गन के छत्र छाया बनल बा।
1: अभी आप श्री कन्हैया लाल रोनियार से इनकी भोजपुरी कहानी सुन रहे थे, दुई गो रोटी। इसी के साथ हमारा आज का देश हमार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मालवी निमाड़ी लोकगीत। कलाकार हैं कांता जोशी।

मालवी निवाड़ी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे कांता जोशी की आवाज़ में। इसी के साथ प्रादेशिक संगीत का हमारा आज का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस सभा में प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें, 7:20 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार और 7:31 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे, फिल्मों से लिए गए कुछ युगल गीत।

रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह के गाए कुछ गजलें।

आज रात्रि 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। इसमें गोरखपुर की प्रस्तुति आप सुनेंगे, जिसके तहत एक परिचर्चा होगी, चुनौतियों से कैसे पार पाएं चैंपियन। इस परिचर्चा में भाग लेंगे संजय राम पहलवान, नीरज गुप्ता फुटबॉल खिलाड़ी, और इस परिचर्चा का संचालन करेंगे दीपांकर मिश्र। तो समय याद रखिएगा, आज रात्रि 10 बजे। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रात्रि 10:30 पर होगा। इसमें आज हम आपको सुनाएंगे उस्ताद अल्लाह रखा खान और उस्ताद जाकिर हुसैन का तबले पर युगलबंदी। ये तो थी रूपरेखा हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स के साथ साथ FM 100.1 MHz पर। 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: सोच रहा हूं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के।
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण, कहा प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला, ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन, कहा शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
6: इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं, उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का दान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार दो दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे।
0: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
1: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है।
9: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनू और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई, बाकी पंचायत घर, सचिवालय, आरआरसी सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मों से लिए गए कुछ युगल गीत।

0: गीत फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना। इसमें युगल स्वर थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर के। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और इसे संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: ओ सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे दे दाता के नाम तुझको।
1: आशा भोसले और मन्ना डे को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंखें में। गीत साहिल लुधियानवी का था, संगीत रवि का।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

सौदागर फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और आरती मुखर्जी की आवाज़ थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
2: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
1: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
2: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
1: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
2: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
3: फिल्म संगीत का कार्यक्रम युगल गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। अब लीजिए सुनिए सरगम फिल्म का ये गाना।

0: सरगम फिल्म में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को सुना। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को सुन रहे थे। गीत लक्ष्मी का आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारे ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। आइए अब सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम में गीता शर्मा की वार्ता हिंदी रंगमंच।
1: आधुनिक हिंदी रंगमंच का इतिहास मोटे तौर पर 19वीं शताब्दी के मध्य से आरंभ होता है। तब से लेकर आज तक इस यात्रा में कई पड़ाव आए हैं। हिंदी रंगमंच की इस विकास यात्रा में संभवतः हिंदी रंग चेतना भी नए नए स्वरूप ग्रहण करती रही है और मंचन की प्रक्रिया में हिंदी नाटकों को रंगमंची सार्थकता और नवीनता प्रदान करती रही है। विशेषतः स्वतंत्रता के पश्चात आज़ादी के नवीन वातावरण में एक स्वतंत्र सांस्कृतिक चेतना की अनुभूति ने अन्य बातों के साथ साथ हिंदी रंग आंदोलन को भी एक विशेष गति दी तथा हमारी अपनी रंग परंपराओं के अन्वेषण के कार्य को विशेष बल मिला। इसके परिणाम स्वरूप हिंदी रंगकर्मियों ने अनेक नवीन रंग प्रयोग किए तथा आधुनिक संदर्भों में भारत की अपनी रंग परंपराओं का सदुपयोग करते हुए नई और स्वस्थ रंग भाषा की रचना का प्रयास किया। सर्वप्रथम हिंदी नाटक जगत पर पारसी थिएटर और उसके रंगबोध का सर्वव्यापी और चिरस्थायी प्रभाव पड़ा। यह पारसी रंगमंच की ही परंपरा थी कि हिंदी नाटकों, फिल्मों और हमारे जनमानस पर इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में आज भी कायम है। 20वीं सदी के आरंभ में हिंदी पारसी थिएटर का विकास हुआ। इसका मुख्य प्रयोजन कला से कहीं बढ़कर मनोरंजन, लोकप्रियता तथा धनोपार्जन रहा। यह प्रस्तुतिकरण के मूल तत्व हो गए अतिरंजना, अतिनाटकीयता, चमत्कार और उत्तेजना। भाषा उर्दू निष्ठ रही परंतु अधिक कोमल और ललित हो गई। संगीत में गजल ठुमरी को संवारा गया। संवाद में चुलबुलापन लाने के लिए तुकबंदी और शेरो शायरी का सहारा लिया गया। चरित्र चित्रण पर कम तथा कथानक और उसमें भी आकस्मिक परिवर्तन पर अधिक जोर दिया गया। इन नाटकों का समापन शिक्षा और उपदेश के साथ सुखांत होता था। प्रत्येक स्तर पर दर्शकों को चौंकाना और आश्चर्यचकित करना प्रमुख हो गया। कुल मिलाकर पारसी थिएटर की रंग दृष्टि ने एक नवीन रंग संसार का निर्माण किया। इस रंग मंच ने एक ऐसी रंग भाषा की रचना की जिसमें कलात्मक सूक्ष्मता तो नहीं थी लेकिन प्रदर्शन से जुड़ी स्थूलता और भव्यता अवश्य विद्यमान थी, क्योंकि

विशेषकर बौद्धिक वर्ग अति नाटिकेता से हटकर यथार्थ की ओर बढ़ने लगा। अति नाटिकेता के स्थान पर नाटककार ने सांकेतिक रंगमंच से काम लेना शुरू कर दिया था। भारतेंदु सबसे पहले नाटककार और रंगकर्मी थे जिन्होंने अति नाटकीयता और फूहड़ता के विरोध में हिंदी नाटकों को एक कलात्मक दिशा प्रदान की। भारतेंदु ने अभिनय के अंतर्गत ही पात्रों की वेशभूषा और संगीत की चर्चा भी की है। उनका सुझाव है कि पात्रों की वेशभूषा स्वभाव और अवस्था के अनुसार बदल लेनी चाहिए। कुल मिलाकर रंग दृष्टि से भारतेंदु अपने नाटकों के अंत तक प्रयोगशील रहे। वे प्रयोग एक दूसरे से भिन्न और नवीन रंग प्रयोग है। वास्तव में भारतेंदु ने युग की प्रवृत्ति को पहचाना और उसके अनुरूप ही अपने नाट्य चिंतन को ढालने का प्रयत्न करके एक नवीन रंग भाषा के स्वरूप निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा प्रसाद जैसे भावी नाटककारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। प्रसाद के समय में हिंदी रंग जगत पर पारसी रंगमंच का आधिपत्य स्थापित था जिसके प्रति उनके मन में स्वाभाविक अरुचि थी। उन्होंने इस रंगमंच से समझौता करने की अपेक्षा इससे विद्रोह किया। प्रसाद के बाद हिंदी नाट्य इतिहास में एक यथार्थवादी चेतना दिखाई देती है जो इप्सन, बर्नार्ड शॉ, गालसवर्दी आदि पाश्चात्य यथार्थवादी नाटककारों के चिंतन से प्रभावित थी। हिंदी में लक्ष्मी नारायण मिश, उपेंद्र नाथ अस्क आदि इसी नाट्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यथार्थवादी नाटककारों और चिंतकों ने नाटक के परम्परावादी ढांचे का विरोध किया और अपनी अभिव्यक्ति का मुख्य साधन उन्होंने कार्य व्यापार तथा संवाद को बनाया। इन्होंने नाटक में काव्य में भाषा का पूर्णतः बहिष्कार करके नित्य की व्यवहारिक भाषा का समर्थन किया तथा वास्तविकता का आभास देने का प्रयास किया। इसी के अनुरूप नाटक के रंगमंचीय विधान में भी परिवर्तन किया गया। अब रंगमंची उपकरण सरल, सीधे साधे, अनअलंकृत होने लगा तथा नाट्य प्रदर्शन की प्रचलित युक्तियों एवं कला कौशल के द्वारा रंगमंच को भड़कीला बनाने का यहाँ निषेध होने लगा। प्रयास यही किया जाता था कि रंगमंच पर अवतरित नाट्य स्थितियाँ वास्तविक जीवन का निकटतम आभास दें। आज़ादी के बाद के समय में हमें हिंदी नाटक जगत में एक नई रंग चेतना और नवोन्मेष दिखाई देता है। अब हिंदी के अपने नाट्य और रंगमंच के अन्वेषण पर विशेष जोर दिया जाने लगा। अब यह आवश्यक हो गया है कि एक तरफ एक नए प्रसंग और नए अर्थों से प्राचीन संस्कृत नाट्य, मध्ययुगीन नाट्य, उत्तर भारत के लोक नाट्य, पारसी रंगमंच, लीला नाट्य की परंपरा और उसकी नाट्य संपत्ति का अध्ययन किया जाए तो दूसरी तरफ इसी प्रसंग के पश्चिम के प्राचीन और आधुनिक नाट्य और रंगमंच को देखा जाए। वस्तुतः परंपरागत नाट्य संपत्ति किसी देश के रंगमंच के निर्माण के लिए प्राणदायिनी शक्ति होती है। इसी कारण इस युग में समसामयिक रंगमंच के लिए अपने पारंपरिक रंगमंच की खोज और जिज्ञासा हमारे लिए स्वाभाविक हो गई। यह सोच विकसित हुई कि अपने पारंपरिक नाट्य तत्वों और रूढ़ियों को नई कलात्मक दृष्टि से अपनाकर ही हम पश्चिम रंग तत्वों का प्रयोग भी अधिक कलात्मक रूप से कर सकेंगे। स्वतंत्रता के बाद के इस युग में रंगभाषा के स्वरूप और विकास की दृष्टि से नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। लोक नाट्य और परंपराशील नाट्य से प्रभावित होने के कारण नाट्य कला में यथार्थ की प्रवृत्ति को वे विशेष महत्वपूर्ण नहीं मानते। नाटक में समसामयिक विधिक समस्याओं को यथातथ्य निरूपित करने की अपेक्षा वे उन्हें कल्पना द्वारा निरूपित करने के पक्षपाती हैं। स्थूल घटनाचक्र के स्थान पर सूक्ष्म भावबोध को वे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अतिरिक्त रंग निर्देशों को उन्होंने नाटक के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना है। साथ ही नाटक में संगीत, नृत्य और पद्य के समावेश को उन्होंने खुलकर स्वीकृति दी। उनका मानना है कि भारत में संगीत विहीन रंगमंच जम नहीं सकता क्योंकि भारतीय समाज में भावुक, संगीत प्रिय और किसी हद तक रोमांटिक जाति के लोग हैं। नृत्य को भी उन्होंने नाटक का एक अंग माना है। कुशल अभिनय को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि उसके अभाव में कुशल लेखन, सुंदर दृश्य सज्जा आदि सभी तत्वों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आधुनिक हिंदी नाटककारों में राकेश मोहन ने हिंदी नाटक को अत्यंत सशक्त रूप से रंगमंच के साथ जोड़ा। प्रसाद के बाद हिंदी नाटक में जिस काव्यात्मकता का लोप सा हो गया था उसकी भरपाई राकेश ने अत्यंत सक्षमता के साथ की और हिंदी रंगमंच के लिए बेहद उत्कृष्ट नाटक उपलब्ध कराए। वे नाटककार को सर्वाधिक महत्व देते हुए मंच को वस्तुतः नाटककार का रंगमंच मानकर ही चलते हैं। उनके अनुसार जब तक नाटककार रंगमंच को भलीभांति नहीं पहचानता, रंगमंच के व्याकरण और उसके मुहावरे को नहीं जानता और जब तक वह अपनी इस पहचान और समझ का सृजनात्मक उपयोग करने की क्षमता नहीं रखता तब तक वह किसी श्रेष्ठ नाट्य कृति का सृष्टा नहीं हो सकता। तथापि रंगमंच के अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उन्होंने अपेक्षा नहीं की है। वे मानते हैं कि मंचन की प्रक्रिया में नाटक केवल नाटककार का माध्यम ही नहीं रह जाता बल्कि वह एक संयुक्त प्रयास बन जाता है जिसमें नाटककार, निर्देशक और अभिनेता
की समान सत्ता रहा करती है। मोहन राकेश ने अपने रंग कौशल की तलाश पश्चिम की उपलब्धियों से नहीं बल्कि पूरी तरह अपने परिवेश से की है। राकेश ने रंग मंच के लिए पश्चिमी चकाचौंध को महत्व नहीं दिया, उनका सारा जोर सादगी पर रहा। इन सबके लिए उन्होंने

0: प्रतीकात्मकता का अधिक प्रयोग किया। उन्होंने हिंदी रंगमंच की सही तलाश में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार राकेश मोहन ने भावी नाटककारों और नाट्य चिंतकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और ऐसी नवीन रंग चेतना के विकास के लिए उनका आह्वान किया जो पाश्चात्य रंगमंच का अंधानुकरण करने के स्थान पर भारतीय परंपराओं के निकट हो और हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान को सामने लाए। इसके अलावा आधुनिक हिंदी नाटककारों में मणि मधुकर, मुद्रा राक्षस, भाष्य साहनी, ब्रिजमोहन शाह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शंकर शेष, रमेश बख्शी आदि अनेक रचनाकारों का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने हिंदी रंगमंच में नवीन प्रयोग किए। रंग यात्रा का विश्लेषण तब तक अधूरा रहेगा जब तक उन रंग निर्देशकों और रंगकर्मियों का उल्लेख नहीं किया जाता जिन्होंने नाटक के सृजनात्मक रूप एवं अर्थ की व्याख्या करने और इसे दर्शकों तक संप्रेषित करने के लिए अनेक कल्पनाशील प्रयोग किए। इब्राहिम अलका जी, हबीब तनवीर, श्याम नंद जालान, सत्यदेव दुबे, ओम शिवपुरी, मोहन महर्षि, राजेंद्र नाथ आदि ने 7वें-8वें दशक में प्रस्तुतियों की रंग परिकल्पना में जिस अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है वह आज़ादी से पहले की प्रस्तुतियों में नहीं मिलती। इसी तरह 8वें-9वें दशक में ब.व. कारंत, एम के रैना, बंसी कौल, रंजीत कपूर, अमाल अलाना आदि ने जिंदगी के यथार्थ के कई धरातलों को गहराई तक व्यक्त करने वाले रंग शैलियों की तलाश की। कहीं नाटक को बंद प्रेक्षागृह से बाहर लाकर पारंपरिक रंग शैली खेला, कहीं काव्यात्मक धरातल को अपनाया और कहीं रीतिबद्ध शैली का व्यंग्यपूर्ण इस्तेमाल किया। इन्होंने कल्पनाशील मंच सज्जा, प्रतीकात्मकता, रचनात्मक प्रकाश व्यवस्था, कोरस, सूत्रधार, वाचक और संगीत के उपयोग, रंग उपकरणों और मुखौटों के इस्तेमाल, प्रदर्शन में दर्शकों की हिस्सेदारी आदि किसे रंग शिल्प के स्तर पर अनेक साहसिक प्रयोग किए। कुल मिलाकर हिंदी नाटक और रंगमंच ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है। यह यात्रा 19वीं सदी में आरंभ हुई थी तथा आज़ादी के बाद नए रंग आंदोलन के रूप में जिसने गति पकड़ी वह आज भी निरंतर जारी है। आज भी यह प्रयास जारी है कि हिंदी रंग जगत को विभिन्न शैलियों और प्रयोगों से समृद्ध किया जाए जिसमें न केवल हमारी प्राचीन नाट्य परंपरा, मध्यकालीन भाषा, नाट्य पारसी रंग परंपरा, लोक नाट्य परंपराओं आदि का योगदान हो बल्कि पाश्चात्य और विश्व के अन्य नाट्य परंपराओं का समुचित प्रयोग हो।
1: हिंदी रंगमंच। अभी आप गीता शर्मा की ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का हिंदी कार्यक्रम संपन्न होता है।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: Akashvani at 90.
1: यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत के प्रोग्राम में आज के फनकार हैं जगजीत सिंह।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सुगम संगीत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। इसमें आज के फनकार हैं जगजीत सिंह।

सुगम संगीत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें।

0: जगजीत सिंह की गाई चंद गज़लें अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के सुगम संगीत के प्रोग्राम में। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का आज का अंक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
2: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
4: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
3: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
5: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
3: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 ब्रांचेस आल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Government forms panel to probe into procurement of services for on-screen marking system by CBSE. Appoints Lokhande Prashant Sitaram as CBSE chairperson. India rejects third-party involvement in resolving boundary matters with Nepal. India successfully flight tests indigenous Rudram 2 air-to-surface missile. Prasar Bharati's Waves OTT crosses 1 crore users within 2 years of launch. 21 people killed in Russian strikes across Ukraine. And in women's cricket, India to take on hosts England in third and final T20 international at Taunton tonight. And now the news in detail. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. The OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission, S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. In another development, Senior IAS Officer Lokhande Prashant Sitharam has been appointed as the new chairperson of the CBSE. Mr. Sitharam was earlier serving as an additional secretary in the Home Ministry. His appointment was made in place of Rahul Singh, who has been transferred to the Department of Agriculture and Farmers Welfare as additional secretary. The government has also appointed Varun Bharadwaj as secretary in the CBSE. His appointment has been made in place of Himanshu Gupta, who was serving as the secretary in CBSE. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books.
8: Soon the portal was made live. Malicious actors attempted to disrupt services through a barrage of cyber attacks. The CBSE said that the most recent being a denial of service attack attempt causing 1.5 million hits on the portal within a matter of 2 minutes and more than 1 lakh attempts of unauthorized file access. The board said that its teams remain vigilant and responsive to ensure that the students are facilitated in all ways possible. Based on students' feedback, CBSE has further refined the platform, including extending session time limits to make the process more convenient and seamless. The CBSE said that the portal is currently supporting over 8,000 concurrent users and more than 16,000 students have successfully completed their submission this evening. The portal will remain open till June 6th and no offline applications or requests submitted after the deadline will be accepted. With Anand Kumar, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
7: A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till the 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on the 3rd of May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to

0: Sinha, economic analyst, and Rajesh Lekh, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on AIR.
1: Money Talk. Manthan. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जिसने शहरों और कस्बों में काम करने वाले रेहड़ी पटरी वाले छोटे विक्रेताओं की मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजेश कुमार जी, जो जनरल मैनेजर हैं सिडबी के, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: राजेश जी। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आम लोगों के समझने के लिए कि ये पीएम स्वनिधि योजना आखिर है क्या, और इससे रेहड़ी पटरी वालों को खास तौर पर क्या फायदा मिलता है।
3: पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली एक लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई योजना थी, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से 3 चरणों में लोन मिलता था। पहला लोन 10,000 का था, दूसरा 20,000 का और तीसरा 50,000 का। इस लोन के साथ साथ उनको इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता था। और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है QR कोड के थ्रू पेमेंट लेना या डिजिटली पेमेंट करने पे 100 रुपए तक प्रति मंथ का इंसेंटिव था
2: जी।
3: अब उसके अलावा 400 रुपए का और इंसेंटिव ऐड हो गया है, जो कि बल्क ट्रांजेक्शन परचेज करने पे उनको मिलता है। इसके अलावा जो सरकार की 8 वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे जोड़ने की योजना थी और उनके स्किल के डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
2: तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है खासतौर पर कोरोना के बाद छोटे दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
3: ये मददगार कितनी ज्यादा थी, ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1,13,00,000 लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में स्कीम में, अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा चाहिए था
2: जी।
3: बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है और लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है
2: जी। राजेश, एक अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेहड़ी पट्टी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए और उसमें उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
3: सुधार 2 रूप में आप देख सकते हैं। एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
2: जी,
3: जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतनी ही लेते थे, क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया, फिर 50,000 रुपया का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ ना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए सुविधा हो रही है और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है
2: जी।
3: तो दोनों रूप से फायदा हुई और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, 2 स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
2: कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय, कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
3: बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, सिर्फ आप मछली बेचते थे अब मछली को जो है सो फ्रिज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच पा रहे हैं या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
2: आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
3: शुरुआती दिनों में डिमांड था इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी और सरकारी जो मशीनरी है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूएलबीज हो अर्बन लोकल बॉडी मतलब जो शहर का जो लोकल निकाय है उन लोगों में भी रुचि थी। बट एक मुश्किल जो थी इनको बैंक तक ले जाना और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है और लोग ऋण चुका रहे हैं तो उसके बाद ये पीछे मुड़ के इस स्कीम ने नहीं देखा।
2: ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे बढ़कर अपना काम करते हैं?
3: मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं, वो हेल्थ का इश्यूज हो बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की। और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है, आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्रीपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा। आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो वो लोन मिलेगा
2: जी,
3: तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में।
2: जी जाहिर है, तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है और उसका एक इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव की भी आपने बात कही थी, वो किस तरह से होता है और पिछले 6 सालों में लोगों ने इसमें किस तरह का रुझान दिखाया?
3: डिजिटल इंसेंटिव है अगर आप जैसे ग्राहक से अपने पैसा जो है सो क्यूआर कोड के थ्रू ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, या आप जो अपनी पेमेंट करना है जो आप खरीद करते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं पर्सनल हो या बिजनेस एक्सपेंसेस हो, तो एक तो रिटेल का हम देते हैं जो साल में मैक्सिमम 1200 रुपए तक मिल सकता है, 100 रुपए प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
2: जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
3: महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं ही हैं, तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता प्रदान कर रहा है। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
2: एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है पूरी तरह से, एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
3: अर्थव्यवस्था को फायदा ये है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इम्प्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको होता है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके, वो आपके के घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो, जिस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी, लेकिन जहाँ जो क्रिटिकल है वहाँ वो उस पर एक्सपेंड करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
2: आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया, तो उसमें क्या क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
3: एक तो हम देखना चाह रहे थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाह रहे थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं। तो चार बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उनके घर का रहन ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ, और खाने पीने का एक न्यूट्रिशन जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली वो मिल रहा है कि नहीं, कि इन चारों पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
2: तो क्या परिणाम इसके निकल के आए? क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
3: उस ढंग से उसको क्लासिफाई नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना अमूलचूल है। ये अमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता
2: जी,
3: लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता।
2: इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए और नए लोग भी स्कीम में शामिल होंगे?
3: अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, अब हम उसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक तो वो फायदा हो रहा है और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है। और तीसरा हम उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनके उनको एक बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
2: सर आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सके?
3: जैसे हमारा जो स्कीम है जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन कहते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75-75 लाख लोगों ने लोन ले रखा है।
2: बिल्कुल,
3: उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से। या तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकेंड लोन के लिए एलिजिबल है, उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकेंड लोन लिया है, और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है। एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपे कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60-70% लोग जो है सो नेक्स्ट लोन लेते हैं।
2: तो चलिए हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
4: सर हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे ठेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर
2: जी।
4: और जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी, कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे, दुकान फिर से शुरू की, तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर। तो उसी समय सर पीएम सुनिधि जो आई, ये सर अच्छा हो कि पहली बार तो बैंक हम लोग को सम्मान मिलने लगा, फिर उसके बाद जो हम लोग उसमें रजिस्टर करा कर अपना 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। पहली बार तो उसमें मंथली देना पड़ने लगा, फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000, 20,000, 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है। उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला, और उसके साथ साथ पीएम सुनिधि साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
2: बिल्कुल, तो विष्णु जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी, अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी बात बता रहे थे कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के यूएलबी बॉडी होता है, आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो, और नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें। और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कंबाइंड रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा, जिसको हम LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका LOR UELB अप्रूव कर देगा तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
2: तो राजेश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद आपका।
1: अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। खेल दर्पण के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परिचर्चा। परिचर्चा का विषय है चुनौतियों से कैसे पार पाएं चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दीपांकर मिश्र। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा चुनौतियों से कैसे पार पाएं चैंपियन।
1: श्रोताओं नमस्कार। खेल दर्पण के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं भारत जैसा कहा जाता है कि प्रतिभाओं का देश है। यहाँ ढेरों प्रतिभाएं हैं चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज विशेष रूप से हम भारतीय खेल खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि भारत में खेलों की बड़ी ही अद्भुत प्रतिभाएं रही हैं और अभी भी हैं। लेकिन जब हम परिणामों से उनकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, जैसी विशाल जनसंख्या है हमारी, उस तरह का प्रदर्शन जो है वो नहीं हो पाता है, नहीं निकल के आ पाता है। हालांकि व्यक्तिगत प्रतिभाओं की बिल्कुल कमी नहीं है और ये हमारे खिलाड़ियों ने समय समय पर अपने प्रयासों से साबित भी किया है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो विशेष मेहमानों को। एक तो हमारे साथ हैं संजय राय जी जो कि कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और साथ में हमारे हैं नीरज गुप्ता जी जो प्रदेश स्तरीय फुटबॉलर हैं और अभी भी खेल से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो संजय जी और नीरज जी आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूँ।
2: धन्यवाद।
1: संजय जी आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, अपनी समस्याएं हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं मार्ग में उनके बाधा बन जाती है प्रतिभा के बावजूद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एक खिलाड़ी के रूप में कैसे देखते हैं कि कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो एक भारतीय खिलाड़ी को झेलनी पड़ती है।
2: अपने जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है खिलाड़ियों के लिए, तो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए और उसके प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट। हम अपने एकल प्रयासों से एक लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, हम एक स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे ऊपर उठना है हमको और इससे ऊपर का जब हमारा टारगेट होगा और उसको अचीव करना होगा तो वहाँ हमारी जो भी क्षमताएं हैं पूरी क्षमताओं के साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। खिलाड़ी के लिए जैसे कुश्ती से है या हॉकी का प्लेयर है या किसी भी फील्ड का प्लेयर है तो हर गेम के अलग अलग इक्विपमेंट हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और फिर जो एक खिलाड़ी को जो आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जिसका होता है, जिसको गुरु कहा जाता है, कोच कहा जाता है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है।
1: चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं नीरज जी से कि नीरज जी आपको क्या लगता है जो खिलाड़ियों को चुनौतियां का सामना करना पड़ता है भारतीय खिलाड़ियों को, आपके हिसाब से वो कौन ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे।
3: मैं संजय राय जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। खिलाड़ियों को सबसे बड़ी चुनौती बेसिक होती है कि जिस खेल में वो जुटे हुए हैं उस खेल का उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अलग अलग खेल के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, फाइनेंशियल की जो इन्होंने बात कही है वो भी बात है, इसमें इसकी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
1: आपने जैसे कहा कि आर्थिक सहायता, तो आप लोग एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आर्थिक पक्ष जो है खेल का वो एक खिलाड़ी को किस तरह से प्रभावित करता है और उसके प्रदर्शन को किस तरह से प्रभावित करता है।
2: फाइनेंशियल सपोर्ट का तात्पर्य यह है कि खिलाड़ी की, जैसे हम चूंकि कुश्ती से जुड़े हुए हैं तो हमारा एक रूटीन वर्क के बाद एक रूटीन डाइट चार्ट होता है। अगर हमने आज सुबह के सेशन में 3 घंटे वर्जिश किया है, पसीना बहाया है, तो नेक्स्ट सेशन में हमें बिल्कुल तैयार होने के लिए इस तरह की डाइट चाहिए कि बीच का जो समय है उसको रिकवर कर ले वो, यानी कि हम अपने इवनिंग सेशन के

0: अपने इवनिंग सेशन के ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाए। दूसरा चीज इसमें है फाइनेंशियल सपोर्ट में, ये भी है कि हमको कहीं खेलने जाना है या किसी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में अगर हमको जाना है तो हमारे पास जो हम लोगों के खेल के परिधान होते हैं, अब हर चीज काफी महंगी हो गई है, तो जैसे रेसलिंग शूज है, कॉस्ट्यूम है और प्रॉपर जो किट होती है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल गेम है तो इंडिविजुअल गेम में इंडिविजुअल व्यक्ति भी स्पॉन्सरशिप किसी को दे सकता है कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल गया, उसने हमारा पूरा खर्चा उठाया, भाई मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, वो हमारे पूरे नेशनल खेलने जाने से आने तक का जो भी कुछ हुआ, कोई व्यक्ति हमें ऐसा स्पॉन्सर मिल गया या कोई ऐसा हमें सपोर्ट करने वाले मिल गया कि भाई चलो हम आपके बादाम का खर्च उठा लेते हैं, तो ये जैसे एक व्यक्ति नहीं कई लोग मिलके भी एक व्यक्ति को छोटा छोटा हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
1: जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। नीरज जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप फुटबॉलर हैं तो विशेष रूप से फुटबॉल के क्षेत्र में जो आर्थिक पक्ष है, जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता है, वो चाहे सरकार से आए या निजी संस्थानों से आए, वो कैसे प्रभावित करती है और अगर उसको बेहतर किया जाए तो कैसे आपके खेल की गुणवत्ता बढ़ सकती है?
2: जैसे कि संजय भाई ने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए प्रॉपर डाइट होता है, तो खिलाड़ी अगर 3 घंटे 4 घंटे अपना पसीना बहाता है तो नेक्स्ट जैसे कि लेवल के लिए जो अगर सुबह उसने वर्कआउट किया अपना 3 घंटे 4 घंटे जो भी प्रैक्टिस किया, उसके बाद उस खिलाड़ी की पूरी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। जो एनर्जी उनका एग्जॉस्ट हुआ तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होता है, मेंटेन किया जाता है, चार्ट वगैरह उसकी तैयार होती है, तो उस डाइट को प्रॉपर पूरा करने के लिए एक रूटीन के हिसाब से अपना आदमी डाइट बराबर करता है, तो उसमें भी खर्चे भी ज्यादा आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूस वगैरह टाइम टू टाइम हर चीजें, तो डाइट पर भी असर पड़ता है, डाइट पे जो फाइनेंशियल आता है उस पर भी असर, वो भी खिलाड़ी के मतलब उस पर असर करता है, आगे बढ़ने के उस पर असर आता है उससे भी।
1: चलिए, तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चलिए, जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं, अगर कि अपने खेल के, अपने प्रदर्शन की बदौलत उनकी कहीं नौकरी लग जाती है तो फिर भी उनके सामने एक विकल्प खुल जाता है, या फिर वो अपने खेल में बहुत ही ऊंचा नाम कर लें, किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिताब ले आए, तो फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो बीच के खिलाड़ी हैं, जो अभी तक उतना नाम नहीं कर पाए हैं या अभी भी संघर्षरत हैं, तो एक बात तो ये बताइए कि उनके लिए किस तरह की सहायता उपलब्ध है सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, और उसमें कहाँ कमी है जिसे पूरा किए जाने की जरूरत है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका ये, क्योंकि ये बिल्कुल आज के परिवेश में खिलाड़ी जिन चुनौतियों से जूझ रहा है वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खिलाड़ी को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें पहले तो हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुश्ती फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, तो कुश्ती फेडरेशन अपने हर आयु वर्ग के सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, अंडर 15, अंडर 23 लेवल का नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश में। तो हर वेट कैटेगरी में फर्स्ट, सेकेंड और 2 थर्ड, मतलब 4 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं हर वेट कैटेगरी से, मेन एंड वोमेन, और उसके बाद इन लोगों को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक कैंप देती है जिसको नेशनल कैंप कहते हैं, हम लोग इंडिया कैंप भी उसको कहते हैं, तो उसमें सारी व्यवस्था रहती है और सारे उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के सारे कोचेज होते हैं, वो आपको उनका प्रैक्टिस रूटीन पूरा मेंटेन करना होता है और कंटिन्यू आपको उसमें ड्यूरेशन होता है इंडिया कैंप का, 90 दिन का होता है, 60 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। इसके अलावा जो प्लेयर छूट जा रहे हैं, जिनका नेशनल चैंपियनशिप में मेडल नहीं आ पा रहा है, जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन भाई वहां पे बस फर्स्ट, सेकेंड और 2 थर्ड की ही जगह है, तो इसमें जो लोग सक्सेस हो गए, जिनका मेडल आ गया वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने अभी तत्काल में रैंकिंग सीरीज का प्रावधान डाला है। रैंकिंग सीरीज का नियम है कि उसमें चाहे एक वेट कैटेगरी में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका कोई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोई बाउंड नहीं है उसमें, और रैंकिंग सीरीज में अगर हम या जो भी प्लेयर है और रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो, और रैंकिंग सीरीज में अगर वो मेडल देते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म ये मिल जाता है कि वो सीधे कैंप के हकदार हो जाते हैं, उस नेशनल कैंप के हकदार हो जाते हैं जिस नेशनल कैंप के लिए उन्होंने एक ख्वाब बना के बरसों से ग्राउंड पे मेहनत किया था, पसीना बहाया था, और फिर वो उसी इंडिया कैंप से, नेशनल कैंप से वो शुरुआत होती है जो सपना लगभग हर एक खिलाड़ी देखता है कि जो भी टीम बाहर जानी होती है नेशनल कैंप से ही उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, ट्रायल लिया जाता है, उसमें जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वो उस समय की जो भी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होनी रहती है उसके हिसाब से वो ट्रायल होता है, उसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो बच्चे जाते हैं। तो

0: एक तो फेडरेशन का ये बहुत बड़ा एक खिलाड़ियों के लिए कदम है, और इसके अलावा एक फाइनेंशियल सपोर्ट में जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WPL रेसलिंग प्रो लीग ऑर्गेनाइज करती है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही एक खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है कि जैसे अगर उसमें कोई भी खिलाड़ी जिसका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपने करियर का और उसको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है और अचीवमेंट उनका अच्छा रहा है और कंटिन्यू वो मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नेशनल टूर्नामेंटों में, तो उनकी फेडरेशन के माध्यम से जब टीमें इनकी बोली लगती हैं तो वो अपना जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेबल कराते हैं, तो जो भी ऑनर है उनको अगर कोई ऑनर लेता है अपनी टीम से खेलने के लिए तो वहाँ एक अच्छा पैसा मिलता है उनको, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि लगभग हमको ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी को अगर एक टीम ऑनर अपने टीम से खेलने के लिए खरीद लेता है तो वो टोटली चीज जो फाइनेंशियल हेल्प की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर का पूरा हो जाता है, फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत भी हो जाता है जिससे वो अपनी आगे की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके, तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक माहौल तैयार हो रहा है देश में, फेडरेशन की अच्छी पहल है। और नीचे थोड़ा सा एक कहना चाहेंगे कि जैसे एक तो हम एक लेवल पे हम बात कर रहे हैं लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए चूंकि वो ग्रामीण परिवेश जो अपना है वहां से जहां से हम प्रतिभा को तैयार करते हैं नर्सरी जो होती है खेल की, क्योंकि खिलाड़ी एक तो खिलाड़ी हमेशा अभाव में होता है प्रतिभा अभाव में होती है, तो हमें ये जरूरत है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं पहले खुद को बोलता हूं कि अगर मैं ही हूं तो हमें अपने गांव में या हमें उस जगह पे जहां मैं फिलहाल अभी हूं वहां पे ऐसा देखना चाहिए वॉच करना चाहिए हम लोगों को कि भाई ऐसा कौन सा बच्चा है, अगर वो बच्चा है तो हमें उसका हेल्प इतना ही हमें उसको हेल्प करना है कि उसको एक अच्छी जगह बतानी है जहां से उसके रुचि के हिसाब से उसके शौक उसके मुताबिक जिस गेम को खेलना चाहता है उसका कोचिंग देने वाला कोई व्यक्ति हो उसको वहां पे एक ग्राउंड मिल जाए जिस पे जाकर वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, तो ये सब चीजें अगर हम छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करें हम सभी लोग मिलके जो भी लोग खेल से जुड़े हैं तो काफी कुछ चीजें आसान हो जाएंगी।
1: जी संजय जी, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगा कि जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की तो हम सब जानते हैं कि भारत में ढेरों प्रतिभाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तराशना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। तो आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी होने के कारण।
0: बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश ग्रामीण पृष्ठभूमि रही मेरी और हमें कुश्ती से बड़ा लगाव था, परिवार में भी फादर भी कुश्ती करते थे और हम अपने जिस स्कूल में माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्कूल हुआ करता था जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था उसी स्कूल के रास्ते में अखाड़ा हुआ करता था, तो जब हम सुबह स्कूल के लिए निकलते थे तो रास्ते में वहाँ जो उस्ताद जिनको कहा जाता है गांव की भाषा में उस्ताद कहा जाता है तो उस्ताद जी जो बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे और जो लोग अब वर्जिश करते थे देख के बड़ा अच्छा लगता था उनकी शरीर देख के, तो मन में आता था कि काश हमारी भी शरीर ऐसी होती हम भी मेहनत करते, तो ये तो बात है 6वीं 7वीं जब हम लोग पढ़ते थे, फिर उससे ऊपर जब मैं 8वीं 9वीं आया तो मैं थोड़ा और बड़ा भी हो गया था और शरीर भी काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि अखाड़े पे नहीं जाते थे हम लोग लेकिन जब भी मौका मिलता था अपने घर पे अपने दरवाजे पे या कहीं ऐसी जगह जो घर के अगल बगल थी खाली थी वहां पे हम लोग एक वर्जिश का अपना छोटे मोटे गांव वाले जो साधन हुआ करते थे उसको तैयार करके वो करते थे, तो शरीर इस तरह से ठीक हो रही थी अच्छी हो रही थी और खाने पीने की सारी व्यवस्था थी घर पे दूध घी की सारी व्यवस्था थी, तो हमारे गांव के एक लोग हुआ करते थे जो गोरखपुर उनकी दुकान थी वो, तो उन्होंने देखा था हमको हमारी शरीर देखी उन्होंने गांव में जाके, उन्होंने बोला कि नहीं आपको गोरखपुर चलना है कुश्ती के लिए, फादर से बात किया उन्होंने, फादर ने जब हमसे बात किया तो हम तैयार हो गए तो वो लेके हमको गोरखपुर आए, तो गोरखपुर आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर हमारी कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ था, कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ और एक साल तो मैं बिल्कुल गाँव से गोरखपुर आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन एक साल के बाद जब मैं ट्रायल दिया आवासीय छात्रावास के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें ट्रायल देने के बाद उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे ट्रायल होने के बाद मैंने अपने सारे ट्रायल क्लियर किए, उसके बाद उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए, और जो स्टेट कैंप लगा, स्टेट कैंप के बाद फिर फाइनल ट्रायल हुआ, तो हमारा सिलेक्शन हॉस्टल के लिए हुआ। तो जो सबसे बड़ी चीज है, बेसिक जो है, कि ग्रामीण रूरल क्षेत्र में उन लोगों का या ऐसे लोगों का अभाव है जो, जैसे कोई कुश्ती का नॉलेज होना चाहिए, भाई जिसको कुश्ती का नॉलेज है वही कुश्ती का ट्रेनिंग आपको दे सकता है, जिसको बैडमिंटन का नॉलेज है वही बैडमिंटन की ट्रेनिंग दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जबकि हमारी नर्सरी ही वहीं से तैयार होती है। अगर हम उस लेवल पे ये चीज अपना कर लेते हैं कि हम अपने ब्लॉक स्तर पे या अपने एक ग्राम पंचायत स्तर पे, जिसको कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको वो किया जाए कि हम ग्राम पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो, वहाँ पे कम से कम इस तरह के दो चार लोग, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी योजनाएं हैं चल रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक पहल करनी होगी कि इस तरह के लोग चिन्हित किए जाए जो उस ग्राम सभा के अंतर्गत हों, जिनको कुश्ती का ज्ञान हो, जिनको वॉलीबॉल का ज्ञान हो, जिनके अंदर एथलेटिक्स का नॉलेज हो, तो उनसे सुबह शाम एक वो करके और ग्राउंड पे बच्चों को कुछ टिप्स दिए जाए जिससे बच्चे तैयार हो और उनके नॉलेज से उनको इतना लाभ हो कि उस गेम में वो मतलब करने के लिए उनके अंदर जागरूकता हो, उस गेम के प्रति उनका लगाव बढ़े और वर्क करें। इसके अलावा आता है कि अब जैसे हमने आवासीय छात्रावास का आपसे अभी जिक्र किया था, तो आवासीय छात्रावास कुश्ती के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय स्पोर्ट्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल वीर बहादुर सिंह गोरखपुर, और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई। तो लगभग लगभग प्रदेश में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज इस लेवल के हैं और इस स्थिति में है प्रदेश में कि स्पोर्ट्स कॉलेज, जैसे गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज वीर बहादुर सिंह है, इसमें कक्षा छठवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो लखनऊ में है, उसमें कक्षा नौवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तो सिर्फ एक से और पांचवीं तक ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि पांचवी के बाद तो गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है बच्चे के लिए। तो एक से और पांचवी तक का जो जीमा है वो शायद सिर्फ गवर्नमेंट के ही हिस्से नहीं है, उसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि एक से पांचवी तक का जो बच्चा है उसके तैयार करने के लिए हमें खुद समय निकालना होगा, हमें खुद एक पहल करनी होगी। और उसके बाद से हम जब पहल करेंगे तो निश्चित ही, अगर हम 10 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो नहीं 10 तो 2 बच्चे तो जरूर सेलेक्ट होंगे उस आवासीय छात्रावास से, उनको जरूर लाभ मिलेगा, उनका करियर जरूर आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरह से हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स में कुछ नया अगर करना है तो हमें अपने आसपास के बच्चों को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं।
1: संजय जी, आपने जैसा कहा कि पांचवी तक हमें प्रयास करना है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ की खिलाड़ी जाकर अपनी प्रतिभा संवार सकते हैं और उन्हें एक रास्ता मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सूचना की कमी एक बड़ा कारण है, जो आप चीजें बता रहे हैं उसकी भी सूचना बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, विशेष करके छोटे शहरों और गाँव में तो इसकी बहुत ही कमी है। तो आकाशवाणी का एक माध्यम है जो कि सूचना और अच्छी सूचना का प्रसार करे, ये हमारा कार्य भी है। तो आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो प्रतिभाएं छोटी जगहों पे हैं, जिनके पास अभी सूचना के उतने साधन नहीं हैं और वो इस द्वंद में हैं, इस असमंजस में हैं कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे संपर्क करें ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिले, उसे तराशने का एक मौका मिले, तो आप जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें जाननी चाहिए, उन्हें आप बताना चाहेंगे, वो किससे संपर्क करें, किसके पास जाएं?
0: ये बहुत अच्छा रहा आपने चर्चा किया इस पे। ये वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, पूरा इसको कहा जाए कि व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। आज भी फार्म बिक चुके हैं, लोगों ने फार्म भर दिया है, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे, किसी गांव में जाके किसी खेलने वाले बच्चे से जो एथलेटिक्स का शौकीन है या उसकी प्रैक्टिस करता है उससे पूछेंगे तो वो बताएगा कि नहीं, हमने पता कि फार्म मिला नहीं मिला। तो ये प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, ग्रामीण में तो इसकी सूचना भेजी जानी चाहिए। तो इस हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला खेल कार्यालय होता है, तो जैसे ही ये फार्म बिकने होते हैं तो सबसे पहले इनकी नोटिस जिला खेल कार्यालय को जाती है, वो जिला खेल कार्यालय पे नोटिस चस्पा होती है, उस पे लिखा रहता है कि फला से फला डेट तक ये फार्म, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का फार्म, फला से फला डेट तक वितरित किया जाएगा यहाँ से। आप उसकी एक निर्धारित उसका शुल्क होता है, उस शुल्क दे के आप उस फार्म को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक रीजनल कार्यालय होता है, तो आप अगल बगल के अगर जिले के खेल कार्यालय से चीज़ स्पष्ट नहीं होती है तो आप रीजनल ऑफिस पे पहुंच सकते हैं, जहां से 100% ये स्पष्ट होनी ही होनी है कि ये फार्म बिकेगा, कब से बिकेगा, इसका मूल्य क्या निर्धारित होगा, वो सारी चीजें आपको जिला खेल कार्यालय से अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप अपने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर से ले सकते हैं, जो हर रीजन में एक रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का ऑफिस बना हुआ है, जहाँ से जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रन करता है। आपको वो सारी जानकारियाँ वहाँ से मिल सकती हैं, बशर्ते कि आपको वहाँ तक जाना होगा।
1: मतलब ये हुआ कि जो भी नई प्रतिभाएं हैं, जो छोटे शहर और गांव के खिलाड़ी हैं, वो अपने जिले के खेल कार्यालय
0: जी
1: और जो स्थानीय केंद्र हैं
0: जी
1: उसके संपर्क में रहें, तो उन्हें समय आने पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं
0: जी
1: वो प्राप्त होती रहेंगी। चलिए नीरज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि फुटबॉल में भारत में कई प्रतिभाएं समय समय पर दिखती हैं, बड़े नाम आते हैं, लेकिन अगर एक टीम के रूप में चर्चा की जाए तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं फीफा की रैंकिंग में बहुत नीचे है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद एक टीम के रूप में हमारा प्रदर्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना लचर क्यों है? इसके मुख्य कारण क्या है?
2: इसके मुख्य कारण ये है कि खिलाड़ियों को सही जो दिशा निर्देश है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि संजय भाई ने कहा अभी कि खिलाड़ियों को जानकारी नहीं हो पाती है, आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा है फुटबॉल का कि हमारी देश की जो टीम है, ना बढ़ने का कारण यही है कि खिलाड़ियों को सही चीजें और सही फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल पाती, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबी रहती हैं। अभी भी हम गांव क्षेत्र में जाएं तो खिलाड़ियों को देखें तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर भी मौजूद हैं, पर उनको तराशने की ही जरूरत है। ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा
1: ये चुनौती
2: जी
1: बनती है। जी संजय जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि संजय जी जो हैं वो कुश्ती के साथ ही कुश्ती की एक नया प्रकार है, ग्रैपलिंग रेसलिंग, उससे भी जुड़े हुए हैं और उसके बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि ये एक नई विधा है कुश्ती की और इससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रैपलिंग रेसलिंग जो है वो क्या है, वो पारंपरिक कुश्ती से किस तरह से अलग है, और अगर ग्रैपलिंग रेसलिंग में कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए?
0: ग्रेपलिंग रेसलिंग जैसे नाम दिया गया है इसको, ग्रेपलिंग रेसलिंग रेसलिंग नाम इसलिए दिया गया कि रेसलिंग ही इसको, रेसलिंग की जो भी फेडरेशन होती है, चाहे वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW जो वैश्विक संस्था है कुश्ती की, उसी के अंतर्गत रन करती है। और दूसरी चीज कि किसी भी देश में जो भी ग्रेपलिंग की फेडरेशन होगी उस देश की जो नेशनल एसोसिएशन फेडरेशन होगी उसी के अंतर्गत संचालित की जाएगी, कोई अलग उसके लिए संस्था अलग से नहीं बना सकता है। तो ये ग्रेपलिंग रेसलिंग की एक एसोसिएट स्टाइल है, जैसे कि जो प्रोफेशनल स्टाइल है रेसलिंग की ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल, उसके बाद ग्रेपलिंग एसोसिएट स्टाइल में आता है रेसलिंग की। तो ग्रेपलिंग रेसलिंग में, ग्रेपलिंग और रेसलिंग में सिर्फ अंतर इतना ही है कि ग्रेपलिंग रेसलिंग में जैसे रेसलिंग और जूडो को मिला के दोनों की टेक्निक, कुछ टेक्निक इसकी रेसलिंग से ली गई हैं और कुछ टेक्निक जूडो से ली गई हैं, तो रेसलिंग और जूडो को मिला के इसकी सारी टेक्निक बनी हुई है और इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। जैसे चोक किया जाता है, चोक होने के बाद से जो लोग मतलब बेहोश हो जाते हैं, इसको तो एक तरह से इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। तो सबमिशन रेसलिंग भी इसको कहा जाता है, ग्रेपलिंग रेसलिंग है, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी भारतीय कुश्ती संघ ने इसके लिए अलग से एक कमेटी भी अडॉप्ट कर दिया है कंट्री में अपने, ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया अंडर एजिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें एक अलग से एक ऑप्शन मिल गया उन लोगों के लिए कि जैसे जो लोग काफी वर्क कर रहे थे लंबे टाइम से और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार ग्रेपलिंग रेसलिंग को भी करके देखो, हो सकता है कि आपकी वही टेक्निक वही मेहनत यहाँ एक अच्छे मुकाम पे आपको लेके जाए। और अब इसको पूरे देश में इसके सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है, जैसे रेसलिंग के सेंटर हैं तो इसके भी हर जिले पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे, जोन पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे। और अभी फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी अगर इसको सर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे भी काफी इसकी इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, एशियन चैंपियनशिप की, यूरोपियन चैंपियनशिप की सारी टेक्निक्स वीडियो पड़ी हुई हैं जो भी बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है, उसका बेसिक टेक्निक क्या है, उसमें मतलब क्या आपको करना होगा, कैसे चेंज लाना होगा, आप अगर रेसलिंग से ग्रेपलिंग रेसलिंग में आते हैं तो आपको क्या चेंजिंग करनी होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई रेसलिंग में काफी वर्क कर रहा है कोई बच्चा और उसका रिजल्ट नहीं आता है तो एक बार वो चेंज कर सकता है अपना प्लेटफॉर्म। है आप रेसलिंग में ही, लेकिन एक फॉर्मेट अलग हो गया है, आप रेसलिंग से दूर नहीं गए हैं, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। और इसमें हो सकता है आप अगर मेहनत किए हैं, मेहनत करेंगे तो इसमें आपको बेटर रिजल्ट आ सकता है।
1: जी, बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा संजय जी, कि जो नए प्रतिभाएं हैं, नए खिलाड़ी हैं, वो खेल में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश किसी भी खिलाड़ी के लिए तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप खेल हो, शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में, तो एक अनुशासन बहुत बड़ा, अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में जिसको हम फॉलो करते हैं। और अनुशासन के साथ साथ हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं निर्धारित करते तो आपका वर्क नहीं हो सकता है। वर्क के लिए आपका लक्ष्य ही आपको प्रेरित करेगा कि आपको कितना वर्क करना है। अगर आप लक्ष्य अपना नेशनल लेवल कर लेते हैं कि हमें नेशनल से गोल्ड लेना है, तो वो आपका लक्ष्य प्रेरित करेगा कि आज आपको इवनिंग सेशन में कितना वर्क करना है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल का टारगेट लेते हैं कि हमको इंटरनेशनल लेवल में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमको मेडल लेना है, तो हमेशा आपको एक लक्ष्य देना होगा खुद को, क्योंकि उस लक्ष्य को दिए बिना आप दिशाहीन रहेंगे, क्योंकि उसी लक्ष्य के लिए आपको वर्क करना है। आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस लक्ष्य को पाने के लिए वर्क करना है। और जितना ही आपका लक्ष्य ऊंचा होगा उतना ही आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, आपकी प्रैक्टिस इस काबिल होगी कि आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे फाइट कर सकें, तो निश्चित ही मेडल भी आएगा। एक बार आप पार्टिसिपेशन करने जाएंगे, एक बार कुछ और आपका अनुभव बढ़ेगा, अगली बार उसी टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो आप अचीवमेंट लेके आएंगे। तो आपको एक लक्ष्य देना होगा, और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मतलब आपको सोने ना दे, एक जुनून हो उस लक्ष्य को पाने के लिए, आपके अंदर एक जुनून फिर हो जाएगा कि हमें उसे अचीव करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा, बिना लक्ष्य के आप वर्क नहीं कर सकते हैं।
1: नीरज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी है। जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल में उनको पूरा अपना 100% देना होता है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। और जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल को आगे तक अपने मतलब स्वयं को आगे ले जाने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ कुछ टीमें वगैरह जिला की या स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, नेशनल की, मतलब जो टीम ट्रायल वगैरह होती है उस ट्रायल में अगर वो एक दो बार छट भी जाते हैं फिर भी उनको हताश नहीं होना चाहिए। उनको निरंतर उस पर मेहनत करते रहना है, टीम में सिलेक्शन होगा फिर उससे वो और आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई चुनौतियां भी आती हैं सामने कि आदमी थोड़ा सा डगमगा जाता है अपने रास्ते से कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मन में निराश आ जाता है, खिलाड़ी फिर भागने लगता है पीछे कि मेरा तो नहीं हो पा रहा है कुछ, मैं क्या करूं। तो इसलिए खिलाड़ी को हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए।
1: संजय जी, नीरज जी, आप लोगों ने जैसी चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आकाशवाणी के माध्यम से ये सारी बातें, जिसमें सारी सार्थक बातें हुई हैं, वो एक बड़े वर्ग तक और छोटे छोटे सुदूर जगहों पे पहुंची होंगी। बहुत सारी काम की बातें निकल कर आई और बहुत सारी जानकारियां भी हमने जानी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा एक समाज के बड़े वर्ग को मिलेगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दीपांकर मिश्र। इसी के साथ आज का खेल दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन। आप तबले पर मत्ता ताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर संगत किया है सुल्तान खान ने। तो लीजिए सुनिए उस्ताद अल्लाह रखा खान और उस्ताद जाकिर हुसैन का तबले पर युगलबंदी।

अभी आप उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद ज़ाकिर हुसैन का तबले पर मत्ता ताल सुन रहे थे। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे सुल्तान खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का हमारा आज का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education